नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब सुनिए हिंदी में समाचार जिन्हें हम रिले करने जा रहे हैं हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान

के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत से सजा कार्यक्रम वंदना।

कुछ एहसास शब्दों में नहीं ढलते, बस दिल में उतर जाते हैं। कभी ये सरहद पर खड़े एक सैनिक की आंखों में दिखते हैं, तो कभी किसी माँ की दुआओं में, कभी ये तिरंगे की लहराती शान में नजर आते हैं, तो कभी उन अनकहे बलिदानों में। ऐसी हमारी हिंदुस्तान की सरजमी को नमन करते हुए आइए सुने ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

कुछ आवाज़ें वक्त के साथ नहीं मिटती, वो सदियों तक गूंजती रहती है। संत कबीर की वाणी भी ऐसी ही एक गूंज है जो हर युग में हमें सच का रास्ता दिखाती है। न किसी आडंबर की जरूरत, न किसी दिखावे की चाह, बस सीधी, सरल और सच्ची बात जो दिल को छू जाए।

मीराबाई के गीत की शुरुआत तो खुद भक्ति का उत्सव होती है, जिनके लिए श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि उनके प्राण, उनकी सांस, उनका संपूर्ण अस्तित्व थे। मीरा की वाणी में विरह भी है, मिलन भी है, आंसू भी है और अनंत प्रेम की मधुरता भी। तो आइए उसी समर्पण और प्रेम की धारा में डूबते हुए सुनते हैं मीराबाई का एक अनुपम भजन।

के अंधकार में जब कोई दीपक बनकर राह दिखाता है तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि गुरु कहलाता है। गुरु वो शक्ति है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है, जो हमारे भीतर छिपे सत्य को पहचानना सिखाती है। आज की इस पावन बेला में आइए हम सब मिलकर उस दिव्य शक्ति को नमन करें और अपने मन को विनम्र करते हुए गुरु के चरणों में समर्पित यह भक्ति गीत सुनें।

आज भक्ति संगीत से सजी इस मधुर बेला में आपने हमने अपने इष्ट और ईश्वर के साथ उन भक्तों की भक्ति को भी प्रणाम किया जो चिरकाल तक भक्तों को आस्था और विश्वास की प्रेरणा देती रहेगी। इसी के साथ आइए सुने कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, ये सुमधुर भक्ति गीत। इसी के साथ आज की वंदना संपन्न होती है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन। आलेख है किंशुक चौहान का, वाचन प्रीति उपासनी का।
1: इलेक्ट्रिक वाहन, समय की आवश्यकता। बदलते दौर के साथ हमारी जीवन शैली भी तेजी से बदल रही है। विज्ञान और तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आई है। बढ़ता प्रदूषण, पेट्रोल डीजल की महंगाई, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक वाहन यानी ई व्हीकल एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। कुछ वर्ष पहले तक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल भविष्य की कल्पना मानते थे, लेकिन आज यह वास्तविकता बन चुके हैं। सड़कों पर इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, कारें और बसें दिखाई देने लगी है। धीरे धीरे लोग इन्हें अपनाने लगे हैं, क्योंकि यह न केवल सुविधाजनक है बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। हम सभी जानते हैं कि पारंपरिक वाहन पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। इनसे निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का बड़ा कारण बनता है। महानगरों से लेकर छोटे शहरों तक हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। प्रदूषित हवा मनुष्य के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। सांस की बीमारियां, हृदय रोग और एलर्जी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण को कम करने का प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन बिजली से चलते हैं, इसीलिए इनमें धुएं का उत्सर्जन नहीं होता। यदि बिजली का उत्पादन भी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से किया जाए तो पर्यावरण को और अधिक लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा देश पेट्रोलियम पदार्थों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। हर वर्ष करोड़ों रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार तेल आयात में खर्च होता है। यदि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा तो पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी और देश आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेगा। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बजट भी प्रभावित होता है। रोजमर्रा के सफर में ईंधन का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, वही इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रति किलोमीटर खर्च अपेक्षाकृत कम होता है। यही कारण है कि लोग अब ई स्कूटर और ई बाइक को अधिक पसंद करने लगे हैं। सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। सब्सिडी, टैक्स में छूट और चार्जिंग स्टेशन की सुविधाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कई राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो चुका है। इससे सार्वजनिक परिवहन भी अधिक स्वच्छ और किफायती बन रहा है। हालांकि अभी भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग स्टेशनों की कमी है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी पर्याप्त चार्जिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती कीमत भी कुछ लोगों को अधिक लगती है, लेकिन तकनीक के विकास और बढ़ते उत्पादन के साथ आने वाले समय में इनकी कीमत कम होने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जागरूकता। कई लोग अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। कुछ लोगों को बैटरी की क्षमता और चार्जिंग समय को लेकर संदेह रहता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, कंपनियां और समाज मिलकर लोगों को सही जानकारी दें। अंत में यही कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहन आज की आवश्यकता ही नहीं बल्कि भविष्य की अनिवार्यता बन चुके हैं। स्वच्छ हवा, कम खर्च, ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा, इन सभी दृष्टियों से इलेक्ट्रिक वाहन मानव समाज के लिए लाभकारी हैं। जरूरत है जागरूकता, सहयोग और सकारात्मक सोच की। तो आइए हम सभी मिलकर एक स्वच्छ और हरित भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दें और नवाचार को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लें।
0: ये था चिंतन। आलेख था किंशुक चौहान का, वाचन प्रीति उपासनी का।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए खेती की बातें। इसमें आज का विषय है कुसुम चाय, एक विलक्षण दवा। वाचन है डॉक्टर अनुराधा शर्मा का।
3: सभी किसान भाई बहनों का डॉक्टर अनुराधा शर्मा की राम राम। भाई बहनों ने आज बात करांगा कुसुम चाय, एक विलक्षण दवा, इना बारा में। कुसुम या सेफ फ्लावर, जगह की अमेरिकन केसर भिकज का फूल न पंखुड़ी नसी बनेल एक प्राकृतिक हर्बल चाय छे। ई चाय कैफीन मुक्त रज न अपना औषधीय गुण का कारण बहुत अधिक लोग नमा प्रचलित भी छे। कुसुम फसल जम पूर्ण रूप से पाकी जाए तो एक ही सूखी पंखुड़ी नख जी की कभी कभी पीला रंग की रज, नारंगी या लाल रंग की भी हुई सकज, उनका निकाड़े न सुखाड़ी न अलग निकाल लेज। यह सूखी पंखुड़ी न केसर का समान देखाज। इन्हीं सूखी पंखुड़ी न सी बनेल कुसुम चाय में बहुत सारी बीमारी नख ठीक करना की विलक्षण क्षमता छे। चिकित्सकीय परीक्षण न का अनुसार कुसुम फूल में मौजूद औषधि नजी छे वो शरीर में रक्त संचार का गतिशील बनावज, शरीर में जी खून वैरोज ओकामसी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का कम कर देज, न शरीर में खून का जी थक्का जमी जाज ओखा भी कम करज, एका कारण उच्च रक्तचाप भी घटी जाज। एका अलावा कुसुम की पंखुड़ी नसी प्राकृतिक रंग बनावना को भी एक काम अच्छो चली रोज, जेका में कि दो प्रकार का रंग प्राप्त हुई जाज, एक पानी में घुलने वालों पीलो रंग मिली जाज, न कभी कभी दूसरो लाल रंग भी कुसुम का फूल नसी प्राकृतिक तरीका से मिली जाज। कुसुम से बनेल चाय या अपने औषधि कमा तो ये कई बीमारी नसी सफलतापूर्वक इलाज कर देज। एका में से अपन मुख्य रूप से देखाएं तो हृदय रोग, साइटिका, पुराना पेट का संबंधित कई बीमारी न छे, महिला न होने वाली मासिक धर्म से संबंधित जुड़ेल समस्या न, या फिर अपन देखा कि सांस की संबंधित तकलीफ न चीज है, जैसा बहुत सारा छोटा छोटा बच्चा नमा कुकर खांसी हुई जाए या बड़ा लोग नमा पुरानी खांसी रज, वो कम अभी एक ही चाय जी छे कुसुम की वो लाभदायक रज। एक अलावा कान नाक न आँख का साथ साथ त्वचा संबंधी बीमारी नमा भी ये चाय को उपयोग लोग करी रज। चाय बनावने को तरीको बिल्कुल आसान छे। एक तपेली में पानी उबाले लेवा, ओका में उबलता पानी में कुसुम की दुई चार पंखुड़ी ना नाखी देवा, आंच धीमी करी ना 5-7 मिनट तक होकर उबलना देवा। जमा फूल ना को अर्क पानी में आई जाए, पानी हल्का नारंगी रंग को दिखाने लगी जाए तो गैस का बंद करी ना थोड़ी देर ढाकी ना रखी दे। एका में दूध या शक्कर बिल्कुल नहीं मिलावनू है। जिना भाई बहन ना कभी मीठा करना की इच्छा हो तो शहद की एक दुई बीण मिलाई सकज, छानी न ओको उपयोग गर्मा गर्म करनू पड़ेगा। बहुत सारा लोग नख कहनू रहे कि जब उन कुसुम की चाय पी तो उनको तनाव कम हुई गो, एका पीना से लोग नख ताजगी मिलज न दिमाग भी शांत रज। पर एक बात भी हम आपसे कहनू चाहवांगा कि कभी आपका कोई दूसरी समस्या हो, बीमारी न हो, कहीं बीमारी न की दवाई न चली रहो है, या गर्भवती बहन नख भी ये बात की सलाह छे कि आप इन्हीं चाय को सेवन अपना डॉक्टर से परामर्श का बाद ज करो तब ज उचित रहेगा। आज किसान भाई बहनों से हमारो योज कहनू छे।
2: ये थी खेती की बातें, जिसमें आज का विषय था कुसुम चाय, एक विलक्षण दवा। वाचन था डॉक्टर अनुराधा शर्मा का। श्रोताओं, आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें। इस गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 यानी कल सुबह 10:32 से 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है आंखों के विभिन्न प्रकार के रोग और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति कोचर से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर तो सुन ही सकते हैं। इसी के साथ आप इसे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। तो फ़ोन करना न भूलिएगा कल सुबह 10:32 से 11:02 के बीच। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी इंदौर से लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे, उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

ये था श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। कलाकार थे महेंद्र कपूर और शोभना राव। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

सुबह 7:20 पर होगा कार्यक्रम आपका पत्र, जिसमें श्रोताओं के पत्रों के जवाब देंगे कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक। सुबह 8:30 आप

सुबह 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के तहत आज आप सुन सकेंगे विदुषी परवीन सुल्ताना का गाया राग मेघ।

0: सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन पेश किया जाएगा सुबह 10:05 पर। सुबह 11 से 3 तक आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रिले किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11 होगा फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। 12:30 कार्यक्रम संग्रहालय से, 1 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत, फिल्म संगीत दिन में 12:00, 2:00 और 2:30 पर। शाम की सभा शुरू होगी 5:00 युवाणी कार्यक्रम के साथ। इसमें आज का क्रम है एक ही फिल्म से, जिसमें सुनवाए जाएंगे फिल्म मोहरा के गीत। पांच बजकर 45 पर होगा फिल्म संगीत। 6:00 प्रसारित किया जाएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 2026 विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच की कमेंट्री का सीधा प्रसारण किया जाएगा 6:30 से 7:00 तक, फिर 7:20 से 8:45 तक, तत्पश्चात 9:15 से मैच की समाप्ति तक। ये था आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और उसके बाद हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलनावधौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना विभिन्नानां राष्ट्राणां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृत्वा विस्तृतं कूटनीतिक कार्यं विहितम्। विदेशमन्त्रालयानुसारं प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना तथा तस्य कनाडादेशस्य समकक्षीयेण मार्क कार्नी इत्यनेन च भारत कनाडा देशयोः सम्बन्धेषु सकारात्मकतायाः स्वागतं कृतम्। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यनेन सह मिलित्वा प्रधानमन्त्री श्रीमोदी 35-2000 दूरदृष्ट्यान्तर्गतं भारत यूके सम्बन्धानां प्रगतिं समीक्षितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी G7 शिखर सम्मेलनावधौ UAE अध्यक्षेण शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन सहापि मिलितवान्। तथा च पश्चिम एशिया क्षेत्रे चिरस्थायी शान्तिं सुरक्षां स्थिरतां च प्रवर्धयितुं संवादस्य कूटनीतेः अन्ताराष्ट्रिय विधेः सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाश्च सम्मानस्य महत्वम् अधोरेखितम्। केन्या देशस्य राष्ट्रपतिना विलियम रूटो इत्यनेन सहापि श्रीमोदी मेलनं कृतवान्। श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं केन्या च वैश्विक

0: दक्षिणस्य आकांक्षासु दीर्घकालं यावत् सहभागित्वं कुर्वन्ति। जापान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा सह मिलित्वा श्रीमोदी अवधानं दत्तवान् यत् भारत जापान देशयोः सम्बन्धः विविधेषु क्षेत्रेषु निरन्तरं सुदृढं भविष्यति। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम अद्य वैश्विक कूटनीतेः केन्द्रः अस्ति यत् G7 शिखर सम्मेलनस्य महत्वपूर्णे चरणे अस्ति। भारतस्य सहभागी देशस्य रूपेण सहभागित्वेन सर्वेषां दृष्टिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन सह बहुप्रतीक्षितायां द्विपाक्षिक सम्मेलने दृढतया निबद्धः अस्ति यत् अद्य शिखर सम्मेलनावधौ भविष्यति। 25,000 वर्षस्य फरवरी मासे वाशिंगटन डीसी इत्यत्र अंतिम वारम मेलनानन्तरं उभयोः मध्ये एतत् प्रथमं मेलनं भविष्यति। अद्यतनस्य संवादस्य समये तौ बहुविध क्षेत्रेषु द्वैपाक्षिक सहयोगं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यतः तथा च परस्पर हितानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु चर्चां करिष्यतः इत्यपेक्षा अस्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना सह मेलनम अतिरिच्य अद्य प्रधानमंत्री श्रीमोदी सर्वेभ्यः लाभाय संतुलितं सर्वसमावेशं सुस्थिरं च आर्थिक वृद्धेः पुनरुत्थानम् इत्यस्मिन् विषये तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः सुरक्षितं द्रुत प्रभावी उपयोगं सुनिश्चेतुम् इति विषये G7 इत्यस्य कार्यसत्रे अपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री ईयू परिषदः अध्यक्षेण एंटोनियो कोस्टा इत्यनेन सह ईयू अध्यक्षस्य आयोगस्य अध्यक्षया फॉन डेर लेयन इत्यनया सह त्रिपक्षीय सम्मेलनं करिष्यति। जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज इत्यनेन सहापि द्वैपाक्षिकोपवेशनं भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः फ्रांस देशस्य एवियन नगरे G7 शिखर सम्मेलने नूतन सहभागित्वस्य निर्माणं तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्य भावस्य पुनर्निर्माणम् इत्यस्मिन् विषये सत्रम् अभिसम्बोधितवान्। विदेशमन्त्रालयेन सूचितं यत् सत्रावधौ प्रधानमन्त्रिणा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागित्व विनिर्माणे विशेषतः वर्धमान परस्पर सम्बद्ध विश्वे विश्वासस्य महत्वम् अधोरेखितम्। सभायां प्रधानमन्त्रिणा अधोरेखितं यत् भारतं सर्वदा मानवतायै प्रथमम् इति दृष्टिकोणम् अनुसरति। सः अग्रे अकथयत् यत् भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय सहभागित्वस्य दूरदृष्टिः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यस्य कालातीत दर्शनस्य आधारेण अस्ति, विश्वमेकः परिवारः अस्तीति। फुटबॉल क्रीडायां गतरात्रौ न्यूजर्सी क्रीडांगणे प्रथमसमूहस्य आरम्भिक क्रीडायां फ्रांस देशेन सेनेगल देशं 3-1 इति अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
2: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारे भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 12 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और कूनो अभयारण्य जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 18 जून को बैतूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी और ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन व आरती में शामिल होंगी। 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भी राष्ट्रपति सहभागिता करेंगी। वे 20 जून को शाम को करीब 6 बजे जबलपुर पहुंचेंगी। इस दौरान वे 2 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। श्रीमती मुर्मू 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शहर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित मुख्य योग कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया, जिसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक बायोफूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की भी चर्चा की। वहीं फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात कर व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, जापान के प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से भी मुलाकात की। राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 24,000 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की गई है। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए परोपकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी संस्थाओं को अनुदान दिया जाएगा।
1: वर्तमान में कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो 20 बिस्तर से ऊपर के हैं, उनमें डॉक्टरों की व स्टाफ की कमी देखी गई है। जो विशेषज्ञ डॉक्टर मिलना चाहिए वो उपलब्धता नहीं है। तो इस बार एक निर्णय लिया गया है कि 3 जिलों में रीवा, देवास और एक और जिला हो रहा है, जिसमें तीनों जिले के अंदर यह 8 सामुदायिक केंद्रों को निजी तौर पर संचालन करने के लिए दिया जाएगा। यह एक नई नीति ला करके 8 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्वीकृति दी गई है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए देशभर में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि अलनीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने देशभर में पराली प्रबंधन के लिए जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।
2: सब जानते हैं कि पराली जलाने के कारण न केवल पर्यावरण बिगड़ता है बल्कि धरती माता का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। मित्र कीट मारे जाते हैं, धरती की उर्वरा शक्ति घटती है और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से हम भलीभांति वाकिफ हैं। इस बार तय किया कि जब धान की बुआई हो उस समय ही पराली न जले, इसकी योजना बनानी चाहिए। कई कदम हम उठाने वाले।
0: अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू की जयंती पर विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री उज्जैन जाएंगे, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 21 जून को होने वाली नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं। कल मंत्रालय में नीट परीक्षा की तैयारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न कराई जाएगी। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय इस सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों, नीतिगत निर्णयों और विकास कार्यों से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रखा जाएगा। अब रुख करते हैं खेलों की खबरों का। भारत हॉकी महिला नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कल न्यूजीलैंड में हुए क्वार्टर फाइनल में भारत ने जापान को 2-1 से हरा दिया। भारत के लिए कप्तान सलीमा टेटे और लालेर रेमसियामी ने गोल दागे। जापान की ओर से एकमात्र गोल हिरामित्सु ए ने किया। भारत पूल ए में इस समय शीर्ष पर बना हुआ है, जिसमें उसका अगला मुकाबला उरुग्वे से कल सुबह 4:15 बजे होगा। वहीं T20 महिला विश्व कप में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। यह मैच ब्रिटेन में लीड्स में शाम 7 बजे से होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक अब अगले सप्ताह होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर और उज्जैन सहित प्रदेश के 34 जिलों में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, शहडोल जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में कल मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एवं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती पर नर्मदापुरम और जबलपुर जिले में आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आगरमालवा जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक जिले के जलाशयों में मत्स्याखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। झाबुआ कलेक्टर ने कल राणापुर में जनसुनवाई में 54 आवेदनों का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। जबलपुर नगर निगम में पदस्थ प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च वारंट प्राप्त कर उनके ठिकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 26 जुलाई को 8वीं पचमढ़ी मानसून मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की दौड़ होंगी। खंडवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय मास्टर वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुना जिले में पॉली हाउस निर्माण एवं गुलाब तथा अन्य फूलों की व्यावसायिक खेती पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम कल कलेक्ट्रेट परिसर गुना में आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर में 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला कल शहीद ज्योति यात्रा के साथ प्रारंभ होगा। मंडला और डिंडौरी में समान नागरिक संहिता की जन परामर्श की बैठक कल आयोजित की गई और शाजापुर कलेक्टर रिजु बाफना ने कल 41 प्रतिभावान बालिकाओं को 2,05,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार निजी संस्थाओं को प्रोत्साहित करेगी। और प्रदेश में अगले सप्ताह होगी मानसून की दस्तक। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र।

0: आपका पत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती जादौन का नमस्कार। और हमारे साथ हैं आपके पत्रों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम प्रमुख राजेश जी पाठक।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने के पहले
0: जी
1: आरती जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का दिनांक 18 जून 2026 से 22 जून 2026 तक मध्य प्रदेश प्रवास जो है ये प्रस्तावित है
0: जी।
1: और प्रवास के दौरान ये हमारे क्षेत्र में रहेंगे और 19 जून को जो है ओंकारेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस कार्यक्रम इसमें भाग लेंगे
0: जी।
1: ये हमारे लिए बहुत
0: सौभाग्य की बात है
1: कि हमारे क्षेत्र में माननीय राष्ट्रपति महोदय आ
0: रहे हैं।
1: और इस प्रकार की जानकारी से हमें अवगत कराएगी, तरोताजा करेगी
0: जी।
1: और हम अपने श्रोताओं को एक बात और बता दें कि आज जो 17 जून है मरुस्थलीय और सूखे से निपटने का विश्व दिवस है
0: जी।
1: और इसका उद्देश्य जो होता है भूमि के क्षरण, बंजारपन और सूखे की समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1995 में हुई थी और हर साल मनाया जा रहा है। और इसके अलावा इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल कचरा उठाने वाले व्यक्ति दिवस भी मनाया जाता है, तो आज का दिन भी खास महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल सही है।
1: अब हम पत्र का सिलसिला शुरू करते हैं।
0: बिल्कुल शुरू कर दें।
1: इससे पहले जो है ढेर सारे मेल आए हैं, पत्र भी हैं, और जो छूट गए हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9993290063, एक बार पुनः सुन लें, 9993290063, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये लाइव पत्रोत्तर के दौरान आपकी जो साप्ताहिक जो प्रसारण की जो गतिविधियां हैं उससे संबंधित आप पूछिए और बिल्कुल हम उसका उत्तर।
0: और हमारे श्रोताओं को एक बार हम अपना ईमेल भी बता दें।
1: और इस लाइव प्रसारण के दौरान आप ईमेल भी कर सकते हैं। और आरती जी स्क्रीन बोर्ड के बिल्कुल सामने हैं, तो ईमेल बता दें
0: जी। हमारा ईमेल आईडी है आपका पत्र, मैं स्पेलिंग भी बता देती हूँ, APKAPATRA आपका पत्र इंदौर @gmail.com। तो आप इस कार्यक्रम के दौरान भी हमें ईमेल भेज सकते हैं और हम उन्हें अपने इस कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे।
1: तो सबसे पहले किनका मेल आया है?
0: सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से हमारे पास ईमेल आया है। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे का ये मेल है
1: जी।
0: इनके 2-3 मेल्स हैं जो अलग अलग कार्यक्रमों के लिए इन्होंने भेजे हैं अलग अलग समय पर। तो पहला जो मेल मैंने खोला है ये 11 जून के कार्यक्रम के लिए है। 11 जून 2026 का कार्यक्रम जो है महिला सभा, इन्हें बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत
0: इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस और सरकार की भूमिका, सुकन्या समृद्धि योजना, मीना गोदरी जी द्वारा प्रस्तुत कहानी बिछो, फैमिली फिटनेस के अंतर्गत सही फूड प्रोडक्ट कैसे चुने विषय पर दी गई जानकारी ने बेहद लाजवाब लगी। और प्रेजेंटर नीलम चौरे को इन्होंने हार्दिक बधाई दी है। मतलब बड़ा डिटेल में इन्होंने विस्तृत रूप से बताया है।
1: और आगे क्या लिखते हैं?
0: और इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका धन्यवाद हम नीलम चौरे जी तक पहुँचा रहे हैं
0: जी।
1: और अगला मेल,
0: अगला मेल जो है ये है ग्राम खेगांव, तहसील महेश्वर से
1: जी।
0: इसे भेजा है प्रेमलाल वर्मा, निकेश, धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा ने। और भी कुछ इसमें नाम इन्होंने जोड़े हैं। रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक, भावना वर्मा। नेपा नगर मध्य प्रदेश से प्रभुदयाल, शिवदे, शिवा, बसंतीबाई और गणेश शिवदे। और खंडवा मध्य प्रदेश से श्यामाबाई रायकवार और उनके परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से इन्होंने सबसे पहले तो कहा है कि आकाशवाणी इंदौर के सभी कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगते हैं। और साथ ही 7 जून 2026 के कार्यक्रम के बारे में इन्होंने लिखा है, हमारे मेहमान कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर जी से ब्रह्म प्रकाश चतुर्वेदी जी की जो बातचीत थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी
1: और काफी प्रासंगिक बातचीत थी। और हमारे मेहमान में जितने भी हमारे मेहमान आते हैं अपने अपने सभी का एक खास चीज हमारे श्रोताओं को जानकारी
0: उन तक पहुंचती है,
1: बिल्कुल उन तक पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला मेल,
0: अगला जो पत्र है ये जैसा कि मैंने कहा था नागनपुरे परिवार से दो तीन खत हैं। ये वाला जो है सूरज कुमार ढाक से साक्षी ऋतुराज और पूर्णिमा पटेल की तरफ से ये ईमेल है और इन्होंने कहा है कि इन्हें भी आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, रेडियो सेट पर ये कार्यक्रम सुनते हैं और कभी कभी मोबाइल ऐप पर भी सुन लेते हैं। इन्होंने 22 मई के एक कार्यक्रम की बात की है, 22 मई 2026 का इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस पर भी इन्होंने विशेष स्मृतियों के झरोखे से आकाशवाणी इंदौर

0: वरिष्ठ कलाविदों के जो संदेश भेजे गए थे वो इन्हें बहुत अच्छे लगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी पुराने लोग थे जो रेडियो से जुड़े हुए थे और अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया गया। और इस दिन हमने अपना कार्यक्रम स्थापना दिवस पर लाइव किया था और
0: जो बहुत सारे श्रोताओं तक पहुंचा और उसके भी बहुत सारे
1: और
0: संदेश
1: अभी तक देखे कि इसकी
0: जी हाँ ये ईमेल 2-3 दिन पहले ही आया है पर उन्हें वो चीज याद रही, पहले नहीं भेज पाए होंगे तो अभी उन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी।
1: जी, हमारे पास एक व्हाट्सएप संदेश आया है
0: जी।
1: ये भैरूलाल बाकरिया धाकर जी लिखे हैं उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। इन्होंने लिखा है, आज सुबह चिंतन में प्रीति उपासनी से इलेक्ट्रिक वाहन के बढ़ते चलन और उपयोग पर चर्चा सुनी। आगे लिखते हैं, पर्यावरण की स्वच्छता और तेल की बचत हेतु इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का चलन की आज भी आवश्यकता है।
0: बिल्कुल,
1: और वास्तव में इन्होंने सही कहा। देखिए वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहन का महत्व काफी बढ़ गया है, आप पेट्रोल काफी महंगे हो गए हैं
0: जी।
1: और खास करके प्रदूषण की भी रोकथाम इससे हो जाती है।
0: बिल्कुल सही।
1: और आगे खेती की बातें में कुसुम चाय एक वरदान, इस विषय पर अनुराधा शर्मा जी से जानकारी सुनी। हर्बल चाय हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य प्रदक होता है और फायदेमंद है, ये जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। और 16 जून को सुनहरे पल में माजदा खान जी ने बहुत ही लोकप्रिय और मधुर गीत सुनाया
0: जी।
1: और इसके लिए धन्यवाद दिया है, आपका धन्यवाद, हम उन तक पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जी। अगला मेल
0: जो है ये वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई की तरफ से है, ग्राम जसवाड़ी से। और इन्होंने बात की है 14 जून 2026 के कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे के बारे में।
1: जी, क्या लिखते हैं?
0: ये लिखते हैं कि इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों महती वैष्णव, प्रकृति चौहान, आशुतोष तिवारी, तनिषी भावसार और समृद्धि नागर से सुषमा दीदी की जो खट्टी मीठी बातें थी वो इन्हें बहुत अच्छी लगी।
1: और वास्तव में बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं और अपनी जो भावना व्यक्त करते हैं, वास्तव में उनकी जो भोली भाली आवाज होती है सभी की मन को मोह लेती है। और काफी रोचक और काफी अच्छी जानकारी थी
0: जी। और आकाशवाणी की हमेशा कोशिश रही है कि बच्चों से लेकर बड़ों
1: बच्चे
0: तक
1: हो,
0: के
1: युवा हो
0: जी, हर किसी के लिए कार्यक्रम,
1: सभी के लिए कार्यक्रम है,
0: कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर हमारे पास होता है।
1: हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है
0: जी।
1: ये लिखने वाले हैं लखन बैरागी, माधव बैरागी, वेदांश बैरागी, गांव लेकोड़ा अंजना से, उन्हेल जिला उज्जैन, ये लिखे हैं इन्होंने। इन्होंने लिखे हैं, आकाशवाणी इंदौर, हम हमेशा सुनते रहते हैं आपके लाइव प्रोग्राम का, तो खास करके हम इंतज़ार करते हैं। और आकाशवाणी इंदौर में सारी जानकारियाँ मिल जाती है, डेली समाचार पत्र और खेती गृहस्थी की भी अच्छी जानकारी मिलती है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन्होंने कहा है। और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में देखिए, हम इन दिनों हमारे खरीफ में हमारे ढेर सारे किसान भाई जो है सोयाबीन की फसल की बोनी करेंगे
0: जी।
1: और हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण 7:20 से 8 बजे तक प्रतिदिन होता है। और देखिए इसमें हम लगातार सोयाबीन की खेती के बारे में हम किसानों को प्रतिदिन हम करीब करीब जानकारियां हम
0: और
1: सुनवा रहे
0: हैं जो
1: ताकि
0: भी
1: हमारे किसान अपडेट रहें और अधिक
0: हैं।
1: से अधिक उत्पादन ले सकें।
0: बिल्कुल,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल
0: जो है मेरे सामने ये है हुकुमचंद कटारिया का भेजा हुआ है
1: जी।
0: और इन्होंने बाकी नाम भी दिए हैं, वो सभी नाम मैं पढ़ देती हूँ। हुकुमचंद कटारिया हैं, पिंटू सेन, ये खरगोन से हैं, जिला खरगोन से। हरिनिवास खेड़े, बाबूलाल चौधरी, मिश्रा गोल्डन, केपी सिंह चौहान, दीपक, सचिन कटारिया, कृष्ण, विराज, अर्णव, काव्यांशी, कृतिका और प्रभा कटारिया
1: जी, क्या लिखते
0: हैं? सभी की तरफ से ये मेल आया है। और 10 जून को इन्होंने आपका पत्र कार्यक्रम सुना
1: जी।
0: और ये लिखते हैं कि राजेश जी और तृप्ति लटपटे जी की प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही और आपने अधिक से अधिक श्रोताओं के पत्रों को शामिल किया, कम से कम 26 पत्रों को शामिल किया, तो इन्होंने ये भी ध्यान रखा है।
1: बिल्कुल, हम तो कोशिश करते हैं कि जितने भी पत्र आते हैं, जितने भी मेल आते हैं, हम सभी
0: सभी शामिल
1: समावेश करें, सभी के विचारों का शेयर

0: हम अपने श्रोताओं के बीच करें।
1: बिल्कुल, तो इस ये इनको बहुत अच्छा लगा। फिर एक सुझाव भी है इनका कि जिन श्रोताओं के ईमेल या पत्र मिल गए हो हमें, हम उनकी लिस्ट पेश कर दिया करें, ऐसा इनका कहना है।
0: जी, तो फिलहाल जो है लिस्ट तो आप ही लोग पेश करते हैं
1: जी,
0: और हम देखते हैं। और देखिए, ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है
1: जी,
0: और लाइव कार्यक्रम में इस तरह का लिखा जोखा रखना हमारे लिए
1: मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल,
0: क्योंकि सवेरे से अगर हम देखें, सवेरे से प्रसारण और शाम तक, तो कितने लिस्ट हम लोग बनाएंगे।
1: बिल्कुल सही है,
0: ये अप्रासंगिक भी है
1: जी,
0: और इसका चूंकि लेखा जोखा तो हमारे श्रोता रखते हैं।
1: वैसे भी वो सुन ही रहे होते हैं।
0: क्या आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, इसका शेयर बिल्कुल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इन्होंने एक और बात, जैसा एक और मेल में था कि मोबाइल ऐप नहीं चलने के कारण शुक्रवार, शनिवार और रविवार के कार्यक्रम ये नहीं सुन पाए
0: जी। इसकी जानकारी हमें भी है और हमने अपने जो अभियांत्रिकी प्रमुख हैं उनसे भी चर्चा की। उन्होंने बताया इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण इस प्रकार की समस्या
1: नहीं हो पाया था।
0: कुछ इसके और लिए हम अपने श्रोताओं से माफी मांगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: क्योंकि कई बार तकनीकी कारणों से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और इन्होंने सोमवार के गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम को भी सुना। योग दिवस को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में योग पर आधारित लोगों से योग के बारे में जाना, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, और इसके लिए उन्होंने दुर्गेश नंदिनी जी को धन्यवाद दिया है। 16 जून का सुनहरे पल कार्यक्रम भी इन्हें बहुत पसंद आया। माजिदा खान जी द्वारा सुनवाए गए जो गीत हैं इन्हें बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने जिक्र भी किया है जो गीत सुनवाए गए थे उनका, और इसके लिए उन्होंने माजिदा जी को धन्यवाद दिया है।
0: आपका धन्यवाद उन तक पहुंचा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने श्रोताओं को बता दें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम इस साल 21 जून को कलकत्ता में होगा, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव यादव जी ने बतलाया कि इस साल की जो थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, इसका मकसद बढ़ती उम्र में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक मजबूती और सक्रिय जीवन को बढ़ावा देना है, और दुनिया में 2500 जगह पर कार्यक्रम होंगे। तो हम अपने श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि इसकी संख्या और बढ़ा दिया जाए।
1: बिल्कुल,
0: सभी अपने अपने क्षेत्र में योग करें
1: जी,
0: और सभी योग का जो है लाभ लें,
1: इस तरह के कार्यक्रमों में भी शामिल हों, और अपने घर पे कम से कम वो योग करके सभी के साथ शामिल हो सकते हैं
0: जी। और एक चीज और है कि स्वास्थ्य आयु के लिए योग, ये जो है बहुत जरूरी है, सभी व्यक्ति को योग करना चाहिए
1: जी।
0: और योग करने के कई फायदे होते हैं, हमारा जितने भी शरीर के ऑर्गन होते हैं सभी स्वस्थ हो जाते हैं, और अंदर से बिल्कुल ताजगी
1: महसूस होती है। और आज की इस दौर में जबकि बहुत सारी मशीनें हैं, पहले तो हर काम हाथ से किया जाता था, खुद किया जाता था।
0: स्थानीय रूप से हमारे जो भी हमारे क्षेत्र में जो योग दिवस मनाएं
1: जी,
0: उसका भी हमें व्हाट्सएप करें, हम उसको भी शामिल करेंगे।
1: हाँ,
0: ताकि ये संदेश जो है लोगों जन जन तक पहुंचे।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि हमने आपको ईमेल बताया था, एक बार और बता देते हैं। तो जैसा अभी पाठक जी ने कहा कि अगर आप इस दौरान कुछ भी कार्यक्रम में शामिल होते हैं या खुद अपने स्तर पर कोई कार्यक्रम करते हैं, तो आप अपने ईमेल में उसका जिक्र कीजिएगा ताकि हम इस कार्यक्रम में उसे शामिल कर सकें। और एक बार फिर हमारे नए श्रोता अगर हमसे जुड़े हों तो उनके लिए मैं ईमेल बता देती हूँ। APKAPATRAINDORE आपका पत्र इंदौर @gmail.com।
0: आप नोट कर लीजिए
1: जी,
0: और अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, आप अपना
1: अभी भी
0: विचार
1: हमें,
0: जो है
1: हाँ, हमें भेज सकते
0: बजे
1: हैं,
0: तक बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और हमारे बीच देखिए एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, लिखने वाले हैं DC सारस्वत, 15 पटवारी कॉलोनी रतलाम से
1: जी।
0: इन्होंने लिखा है 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दी गई स्वास्थ्य वर्धक जानकारियों के लिए आकाशवाणी टीम को धन्यवाद किया है
1: जी।
0: और ऐसी सरल जानकारियों से मानव समाज को अपने जीवन में उतार कर स्वस्थ प्रसन्न रहा जा सकता है,

0: इन्होंने ऐसा लिखा है, तो हम तो कहेंगे कि अधिक से अधिक लोग योग करें, योग भगाए रोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल
1: ये है सूरज ढाक से, साक्षी, ऋतुराज, पूर्णिमा पटेल का मेल है ये, सुहाना चौक, ग्राम जसवाड़ी से। इन्होंने पहले भी कुछ मेल भेजे हैं, ये वाला जो मेल है ये 15 जून के कार्यक्रम के बारे में है। इन्हें इस तारीख का मराठी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में चर्चा के अंतर्गत जागतिक मल्लखंब दिन, केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष और योग सप्ताह विषय पर जो जानकारी दी गई वो इन्हें बहुत अच्छी लगी। साथ ही श्रीमद् भगवत महापुराण महत्व की प्रासंगिकता के विषय पर जो बातचीत इन्होंने सुनी वो भी इन्हें बहुत अच्छी लगी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास जदुनंदन सोनी, संतोष सोनी, मानस सोनी, तेजस सोनी, द्वारका धाम, जेतपुरा खरगोन से व्हाट्सएप संदेश आया है। इन्होंने लिखे हैं, नर्मदे हर माँ नर्मदा हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और जन जन की आराध्य है। माँ नर्मदा की परिक्रमा लाखों लोग करते हैं, क्या कभी आकाशवाणी से नर्मदा परिक्रमा पर केंद्रित कोई कार्यक्रम प्रसारित हुआ है? तो हम बता दें कि नर्मदा परिक्रमा पर कई वार्ता प्रसारित तो हुए हैं और आगे भी हम करेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: और आगे भी इन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी के पास हो तो अवश्य प्रसारित करें और नर्मदा परिक्रमा पर रेडियो धारावाहिक बनाकर प्रसारित करें, जिसमें नर्मदा परिक्रमा पथ पर आने वाले हर घाट का तीर्थ स्थल की जानकारी हो। जो लोग परिक्रमा में असमर्थ हैं वे रेडियो के माध्यम से परिक्रमा करते हुए पुण्य प्राप्त कर लें। क्या बात है,
1: बहुत अच्छी बात
0: है। आप बिल्कुल देखिए, हम कोशिश करेंगे कि इसका एक अच्छी सी वार्ता और हम रिकॉर्ड करें।
1: हाँ।
0: और इस तरह का रिकॉर्ड करें जैसे लगेगा कि आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और पूरा दृश्य आपके सामने
1: उपस्थित हो जाए।
0: आपका बहुत ही अच्छा सुझाव है। हाँ। और प्रवीण श्रीमाली जी तो नर्मदा तट से बराबर उनका संदेश
1: जुड़े हुए हैं नर्मदा से
0: आते रहता है
1: जी।
0: और उसके साथ माँ नर्मदा की जो तरंगे हैं वो भी हमारे
1: हम
0: साथ
1: तक पहुंचती
0: है। और कई बार तो उन्होंने वीडियो भी भेजा है जिसको हमने यहाँ से प्रसारित भी किया है।
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और
0: हम देख रहे हैं आपके हाथ में कुछ पत्र भी हैं
1: जी।
0: तो पत्र, ये पोस्टकार्ड, ये किनका है, पढ़ें।
1: ये जो है ये है छत्रपति शाहू नगर हिंगोली से, रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत, टिक्कू, रमाबाई, मयूरी, सुरभि, मंजूषा और गौतम इंगोले का है। और इन्हीं के साथ हैं पार्वती, सखाराम, दीपाली, राजू, रोहित, सोनू, मोनू।
0: क्या लिखते हैं?
1: इन्हें कार्यक्रम पसंद आते हैं, ये काफ़ी दूर से हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं क्योंकि मोबाइल ऐप के जरिए अब जो है ये सीमित नहीं रहा है किसी क्षेत्र तक।
0: ये देश और विदेश सभी की सीमाओं को लांघ गया है हमारा आकाशवाणी इंदौर, जो दो चैनल हैं विविध भारती और प्राइमरी चैनल, दोनों के कार्यक्रम पूरे विश्व में सुने जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और
0: जी
1: यहाँ देवास से अनंत चिखले का भी एक पत्र सामने है मेरे
0: जी।
1: ये है? जो है ये नियमित श्रोता हैं, ये वरिष्ठ श्रोता हैं, नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और इनको सभी कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगते हैं, शिक्षाप्रद लगते हैं और मनोरंजन का भी भरपूर समावेश रहता है, ऐसा इनका कहना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे क्या लिखते
1: और हैं? इन्होंने लिखा है कि हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम का प्रसारण जो गुरुवार को होता है वो स्वास्थ्य संबंधी रोगों के बारे में वरिष्ठ डॉक्टर को आमंत्रित किया जाता है, अगर इसका प्रसारण सप्ताह में दो बार कर दिया जाए तो और अधिक से अधिक।
0: बिल्कुल, हमने सुझाव नोट कर लिया है। और देखिये स्वास्थ्य वर्धक जो जानकारियां होती है इसके अलावा युवा के कार्यक्रम होते हैं, युवानी कार्यक्रम में भी दिए जाते हैं, खेती गृहस्थी कार्यक्रम में भी दिए जाते हैं, महिला कार्यक्रम में दिए, विभिन्न कार्यक्रमों में तो चर्चा
1: होती
0: किसी न किसी रूप में तो होती ही रहती है। हमारे पास हिंदराज रेडियो श्रोता संघ है, नेवासा खुपटी से लिखने वाले हैं बंडू लोहार, पोपल घट माया शिवांश, देवीदास पोपल घट और चंद्रकला पोपल घट, और श्रीराम भोकर से लिख रहे हैं हरिभाव बिडवे और श्रावण अनिता बिडवे। इन्होंने लिखा है कि ये आपके केंद्र का कार्यक्रम जो है काफी

0: भी लाजवाब है और अच्छा लगता है, खास करके हम आपकी पसंद फार्मेसी कार्यक्रम ये सारा सुनते हैं
1: जी।
0: और हमारे पास आपके हाथ में देख रहे हैं एक और
1: जी, एक
0: है।
1: और खत है
0: जी,
1: और ये जो खत है इसे भेजा है इंदौर से ही सुरेश मंगवानी, लक्ष्मी, शोभा, निर्मल, ज्योति, नेहा, गोपाल, राहुल, हेमंत और समस्त मंगवानी परिवार की तरफ से ये है। इन्होंने जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है, साथ ही आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर भी कोटि कोटि बधाई भेजी है
0: और कई कार्यक्रम इस पर अभी भी कर रहे हैं और हमारे श्रोतागण भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और कुछ सनावत के श्रोताओं ने भी बोला है कि हाँ। और हम मनाते रहेंगे। तो देखिए 9 दशक प्रसारण के हो गए,
1: बहुत बड़ी
0: बात है। और हर वर्ग के श्रोता जुड़े हुए हैं
1: जी,
0: तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि रेडियो हमारा दोस्त भी है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान हम रेडियो के माध्यम से करते हैं। और देखिए ये अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन भी होता है, इस बार छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है, हमें बहुत खुशी है और पूरे देश के श्रोता इसमें भाग लेते हैं, हमारे क्षेत्र के भी श्रोता भाग लेते हैं।
1: हमारे पास
0: हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, लावरिया भैरू इंदौर से लिखने वाले हैं अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी, मुस्कान, नीलम एवं समस्त बामनिया परिवार
1: जी।
0: लिखते हैं आपका पत्र कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आगे लिखते हैं शिकायत एवं प्रशंसा
1: जी,
0: ये कर रहे हैं 11 जून को चॉइस टाइम कार्यक्रम के दौरान उद्घोषिका माजिदा खान द्वारा श्रोताओं के पत्र पढ़े गए, लेकिन पूरे नाम न पढ़ते हुए कुछ नाम छोड़ दिया। इतनी जल्दी क्यों होती है? इतनी जल्दी इसलिए होती है कि समय कम रहता है और ढेर सारे नाम रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि छोड़ जाना। इसके अलावा और लिखे हैं कि श्रोता बड़ी मेहनत से आपके पास पत्र भेजते हैं, मेल भेजते हैं, जबकि वंदना तिवारी द्वारा एक श्रोता का राइटिंग समझ में नहीं आने के कारण उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। कभी कभी देखिए अभी भी ढेर सारे पत्र और ये हैं, तो किन्हीं की जो हैंडराइटिंग है स्पष्ट है, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप बिल्कुल साफ सुथरा लिखें, अगर नहीं लिख पाते हैं तो बिल्कुल आप टाइप करें। आजकल तो मोबाइल में भी हिंदी फ़ॉन्ट है, टाइप हो जाते
1: कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में बहुत मुश्किल होता है, अगर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे तो उसको कैसे पढ़ें।
0: आगे उन्होंने लिखा है कि रूपाली चौहान को पत्र पढ़ते समय सिंगल नाम पढ़ना चाहिए, जबकि यह उद्घोष का दो नाम एक साथ पढ़ने की आदत है। श्रोताओं के पत्र पढ़ते समय कोमा फुल स्टॉप का विशेष ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बात मानते हैं कि कभी कभी हाँ, हमारे उद्घोषक भाई
1: और वो
0: पुलिस स्टॉप हाँ, का
1: कभी कभी ऐसा होता है पाठक जी कि जो नाम भेजते हैं श्रोता लिख करके उसमें कॉमा लगा नहीं होता है, तो वो समझना मुश्किल होता है कि
0: और
1: वो एक ही है।
0: स्पीड से लोग पढ़ते हैं
1: हाँ,
0: सभी के शामिल करने के लिए कि हाँ, कभी कभी ये चूक
1: हो जाती है
0: लेकिन
1: इसका ध्यान
0: बिल्कुल होनी नहीं चाहिए
1: जी, इसका ध्यान रखा जाए।
0: और आगे लिखते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम की अवधि 1 घंटे कर दी जाए, क्योंकि 15 मिनट के लिए फिल्म संगीत सुनाया जाता है, इसके लिए कार्यक्रम 1 घंटे का किया जाए। तो देखिए ढेर सारे फिल्म संगीत के लिए
1: के
0: तो हमारे विविध भारती चैनल हैं, उस पर तो
1: फिल्म संगीत ही होता है
0: और प्राइमरी चैनल पर जो होते हैं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो नीतिगत होते हैं,
1: युवानी
0: कार्यक्रम
1: होते हैं, खेती गृहस्थी कार्यक्रम होता ही है,
0: मालवीय निमारी गीतों का कार्यक्रम होता है, कई बोलियों में भी हमारे कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। तो सभी का ख्याल रखना पड़ता है और सभी वर्ग के श्रोताओं को भी ख्याल रखना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मेल
1: ये है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से
0: जी, न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं और हमें मेल किए हैं, क्या लिखते
1: और इसको भेजने वाले हैं अरविंद कुमार, गुड़िया, भाव्या, निवेश और नियति,
0: क्या लिखते हैं?
1: और इन्होंने 10 जून को आपका कार्यक्रम सुना तो इन्होंने भी उसकी तारीफ की है, अधिक से अधिक पत्रों को शामिल किया गया, उसके लिए धन्यवाद इन्होंने भेजा है
0: जी।
1: और इन्होंने भी मोबाइल ऐप नहीं चल पाने के कारण जो शुक्रवार शनिवार रविवार का कार्यक्रम नहीं सुन पाए उसकी शिकायत है।
0: इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण ये समस्या आ गई थी, इसका हमें खेद है। और हमारे पास भाटापारा छत्तीसगढ़ से व्हाट्सएप किए हैं
1: जी,
0: लिखे हैं आदरणीय पाठक जी और मैडम जी,
1: जी।
0: इन्होंने लिखे हैं आपका ये कार्यक्रम हम लाइव सुन रहे हैं, सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी।
0: और हमारी तरफ से और हमारे अस्मिता रेडियो फेसबुक ग्रुप की ओर से बहुत बहुत इन्होंने बधाइयाँ दिया है। और लिखने वाले हैं सोहन जी जोशी जी के साथ श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी जी, श्रीमती पायल जोशी, बेबी बैदेही जोशी और बेबी हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। और इसके अलावा हमें व्हाट्सएप पर है अब्दुल गफार डाबर जी खंडवा मध्य प्रदेश से, अनूपपुर से जय जयवंती केवट जी का, सभी ने लिखा है आपका कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से सुनते हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगता है और ख़ास करके जो जो श्रोताओं पर केंद्रित कार्यक्रम जैसे हेलो फ्रेंड्स है ये काफ़ी अच्छे लगते हैं, एमएच हॉटलाइन है काफ़ी अच्छे लगते हैं। एक और व्हाट्सएप संदेश हमें प्राप्त हुआ है, लिखते हैं अनुराग शुक्ला जी इंदौर से, आज मैं पहली बार आकाशवाणी इंदौर पर मैसेज किया है।
1: अच्छा।
0: बचपन से आकाशवाणी सुनते आया हूँ, मोबाइल ऐप पर प्रसारण की जानकारी मुझे आज ही एक मित्र भैरूलाल बाख्तरिया धाकर उन्हेल से प्राप्त हुई। आज सुबह मैंने ऐप डाउनलोड किया और पहली बार मैसेज किया है और आपका शामिल हो गया
1: जी,
0: बहुत बहुत।
1: और उम्मीद है कि आगे भी अब हमको इनके मैसेज जो है संदेश है मिलते रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। एक और व्हाट्सएप संदेश आया है
1: जी,
0: प्रस्तुतकर्ता को स्नेह भरा नमस्कार, खरगोन से लिख रहे हैं
1: जी।
0: रचना राजेश खेड़े, 16 जून में युवानी कार्यक्रम में मुरैना शहर की जानकारी दी गई, काफी अच्छी लगी और इसमें ऐसा लग रहा था कि संस्कृति के बारे में बताया और काफी दिल को भा गया। और आगे लिखे हैं कि वित्तीय बजट की जानकारी दी गई जो सटीक लगी
1: जी।
0: और वर्तमान समय में देखिए इसका काफी महत्व है और हम लोगों को भी बजट अपनी अपनी बजट देखकर ही काम करना चाहिए, परिवार चलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और उमंग कार्यक्रम में झीलों के बारे में जो जानकारी दी गई काफी अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला
1: एक ईमेल मेरे पास है जो कि कार्यक्रम सुनने के दौरान ही हमारे श्रोता सुदर्शन शाह ने भेजा है
0: जी।
1: और
0: क्या लिखते हैं,
1: ये लिखते हैं 15 जून को गुड मॉर्निंग इंदौर के अंतर्गत जो स्वास्थ्य ज्ञान और विश्व शांति करिए योग विषय पर उपस्थित महानुभावों के जो विचार इन्होंने सुने इन्हें काफी शानदार लगे। योग बनाए निरोग विषय पर जानकारी इन्हें बहुत स्वास्थ्यवर्धक लगी। सफल प्रस्तुति हेतु इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। और इन्होंने ये भी बताया है कि इस समय इनके यहाँ अखंड रामायण का पाठ चल रहा है जिसका आज 10 बजे समाप्ति होगी और साथ ही इन्होंने सभी के उज्जवल स्वास्थ्य
0: बहुत बधाइयां और हम सभी की उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करते हैं, आपकी भी उज्जवल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और अगला मेल
1: जो है हेमंत शिंदे ने भेजा है।
0: क्या लिखे हैं,
1: हनुमंत शिंदे माफ कीजिएगा, ये है ग्राम शिरटे जिला सांगली से आया है। इन्हीं के साथ ऋषिकेश शिंदे ने भी ये मेल भेजा है और इनका लिखना है कि 15 जून को प्रसारित किया गया गुड मॉर्निंग इंदौर कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, स्वास्थ्य ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग इस विषय पर दी गई जानकारी इन्हें बहुत स्वास्थ्यवर्धक लगी।
0: हम लोग तो देखिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा लेकिन हम लोग अभी से ही अपने श्रोताओं को योग के प्रति सचेत रहें,
1: जागरूक रहें,
0: इसके लिए अभी से ही जानकारियां और विभिन्न वार्ताकारों को बुलाते हैं, हमारे उद्घोषक भाई बहन भी हैं उनको उन तक जानकारी पहुंचाते हैं ताकि लोग स्वस्थ रहें मस्त रहें।
1: योग निरोग कार्यक्रम के जरिए भी
0: अपने श्रोताओं को
1: नियमित रूप से जानकारी
0: तरोताजा करते रहते हैं। हमारे पास प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से लिखने वाले हैं आनंद जोशी जी, तनुजा जोशी जी, इन्होंने व्हाट्सएप किया है और लिखा है 14 जून को सुषमा जी द्वारा कल के सितारे बच्चे हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत समृद्धि नगर आशुतोष तिवारी प्रकृति चौहान एवं महती वैष्णव की जो चर्चा सुनाई गई बहुत जनोपयोगी लगी और 15 जून को दुर्गेश नंदनी जी द्वारा स्वास्थ्य ज्ञान और विश्व

0: और खुशी की तरफ से इन्होंने लिखा है, दिनांक 12 जून को FM विविध भारती इंदौर से 10 बजे से 11 बजे के दरमियान प्रसारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम इन्होंने सुना जो इन्हें बहुत पसंद आया। 70 और 80 के दशक की फिल्मों के गीत सुनाकर प्रस्तुतकर्ता पद्मश्री तपस्वी जी ने गर्मी की तपिश में सुकून से भरा एहसास कराया। बदहवास करती गर्मी और बारिश की बाट जोते श्रोताओं के लिए पद्मश्री जी ने पानी की बूंदों की मानिंद गीतों की जो झड़ी लगाई तो यकीन मानिए पूरा श्रोता जगत सौंधी सौंधी खुशबू से महक उठा। बड़ा खूबसूरती से इन्होंने लिखा है, बर्फ सी शीतलता प्रदान करती हुई पेशकश ने ठंडी की प्रचंडता को परास्त कर दिया।
1: क्या बात।
0: प्रखर धूप के इस तांडव के बीच पद्मश्री जी की दिलो दिमाग को शीतलता और सुकून देने वाली इस पेशकश के लिए दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त किया है इन्होंने।
1: आपका धन्यवाद उन तक पहुंचा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और देखिए गीतों की तो झड़ी लग गई है।
0: हाँ।
1: अब बारिश की झड़ी लगने वाली है
0: जी।
1: तो हम अपने श्रोताओं से निवेदन करते हैं कि बारिश के एक एक बूंद को आप इसका संरक्षण संवर्धन करें, खेत का पानी खेत में संरक्षण करें और जो छत का पानी है उसको अपना बोरिंग में उतारें ताकि भूमि का जल स्तर बना रहे, इस पर बिल्कुल सजग रहें। और अरविंद कुमार जी बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से लिख रहे हैं कि आकाशवाणी इंदौर में आज पहली बार हमारा नाम शामिल हो गया, इसके लिए आकाशवाणी इंदौर टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है
0: जी। अभी
1: हमारा प्रयास रहता है हम सभी का नाम को शामिल करें।
0: बिल्कुल।
1: और भाटापारा से सोहन जोशी जी पुनः लिखे हैं कि हम आपका कार्यक्रम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत अच्छे श्रोता हैं
0: जी
1: और जागरूक श्रोता हैं। हमारे पास एक और व्हाट्सएप संदेश आया है, चौखरा धाम कॉलोनी सनावत जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं कृष्णपाल सिंह चौहान, नवोदित चौहान, वैभव पाल सिंह चौहान, ध्रुवी एवं प्रदुम सिंह चौहान। लिखते हैं, नसीहत नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। क्या बात। 12 जून को सुबह 7 से 8:30 बजे तक हमारे मोबाइल पर या फिर तकनीक खराबी के कारण कोई प्रोग्राम नहीं सुन सके
0: जी।
1: हमें भी खेद है
0: जी,
1: इधर
0: इसके
1: कुछ
0: बारे
1: दिनों
0: में
1: से इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है, इसके कारण जो मोबाइल न्यूज ऑन एयर ऐप पर जो प्रसारण है वो बाधित हो रहा है
0: जी।
1: आगे लिखे हैं कि सुबह की सभा के सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, योग निरोग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और 16 जून का चिंतन बहुत ज्ञानवर्धक लगा और इसी सुनहरे पल पर पुराने सदाबहार गानों को सुनकर मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी
1: चौहान जी, आप हमारे कार्यक्रम को सुने।
0: एक ईमेल है खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका और संप्रीत पंचोलिया का।
1: क्या
0: इन्होंने लिखा है, इंदौर परिक्रमा कार्यक्रम बहुत मेहनत से तैयार किया हुआ लगता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस पर विशेष भेंट वार्ता दीपक विभाकर नाइक से मुकाम सिंह चौहान की जो चर्चा थी वो उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी। रक्तदान कर हम मानव जीवन की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा है, आकाशवाणी के 90 वर्षों पर केंद्रित अनाउंसर डायरी यानी पुस्तक के कार्यकारी संपादक की भूमिका में संजीव मालवीय जी को मिली उपलब्धि पर ये उन्हें बधाई देते हैं
1: और आपका बधाई संदेश हम उन तक पहुंचा रहे हैं। वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए हर एक कोई रेडियो सुनते हैं लेकिन रेडियो में जो अनाउंसर बोलते हैं
0: जी
1: उनके विचार सुनने के लिए लोग तरसते हैं और उनको देखने के लिए भी लोग तरसते हैं। वास्तव में श्रोताओं के दिल से जो जुड़े हुए होते हैं वे हमारे उद्घोषक भाई बहन भी होते हैं
0: जी।
1: और मैं तो कभी कभी आता हूं आपसे
0: पर आपसे भी इस तरह से आप रूबरू हो पाते हैं आपका पत्र कार्यक्रम के जरिए।
1: इससे क्या होता है कि जो भी हमारे श्रोताओं को जो समस्या होती है
0: जी
1: हम तक पहुंचती है सीधे और हमें भी समझने का और सीधे बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए गलती सभी से होती है।
0: बिल्कुल।
1: और सुधारना और अच्छे रूप में पुनः श्रोताओं तक परोसना ये भी एक कला है और हमारा उद्देश्य है हम अपने श्रोताओं को सूचना शिक्षा और मनोरंजन के जरिए उन्हें सशक्त बनाएं
0: जी। एक बात और धन्यवाद। एक बात और लिखी है इन्होंने, निमाड़ की धरती पर राष्ट्रपति मुर्मू जी का जो आगमन हो रहा है, अभी आपने जानकारी दी थी उसके बारे में लिखा है, उनका आगमन हो रहा है ओंकारेश्वर में 18-19 जून को और आकाश

0: इंदौर केंद्र से
1: ओंकारेश्वर में, जैसा कि हम बताए कि 19 जून का सिकल सेल पर केंद्रित कार्यक्रम है
0: जी, तो जो वहाँ हैं आसपास वो तो उसमें शामिल हो सकते हैं।
1: 5 दिन के प्रवास पर हैं तो अलग अलग स्थानों पर जाएंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
0: और इनका कहना है कि आकाशवाणी इंदौर से राष्ट्रपति महोदया के कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट और लाइव रिपोर्टिंग सुनने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है।
1: उम्मीद नहीं, बिल्कुल होगी और सीधा प्रसारण करेंगे इसका,
0: तो आप
1: और
0: सुनने
1: हम
0: के लिए
1: अपने श्रोताओं को बिल्कुल अवगत करा दें
0: जी।
1: और तैयार रहें, हमारी पूरी टीम मुस्तैद है और लगी हुई है इसमें व्यवस्था में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से अशोक मेहता जी लिखे हैं, पूरे परिवार सहित लिखे हैं, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। इन्होंने लिखा है, कृपया आकाशवाणी इंदौर का जो है आप अपना एक बार मेल बता दें
0: जी। एक बार फिर बता देते हैं, हमारा ईमेल आईडी है आपका पत्र इंदौर APKAPATRAINDORE आपका पत्र इंदौर @gmail.com।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पास लिखे हैं मनीष शीतल निवारे जी खरगोन से
0: जी।
1: हम श्रोता हैं और इसकी लत बचपन से है। बहुत सुंदर उपमाओं अलंकारों से युक्त प्रशंसा वाले पत्र ईमेल सुन अच्छा लगता है
0: जी।
1: इसके लिए धन्यवाद दिया है। और हम अपने पत्रों में अंतराल रखते हैं क्योंकि अन्य श्रोता भी हमारे बंधु हैं। बहुत अच्छा विचार है मनीष जी आपका, बहुत बहुत
0: और ये
1: धन्यवाद। और हमारे पास एक और हमारा खत लिखे हैं हनुमंत सिंधे जी, ऋषिकेश सिंधे जी,
0: इनका हमने शामिल किया,
1: बिल्कुल लिखे हैं कि अधूरा पत्र इन्होंने शामिल किया, तो समय की देखते हुए अब समय भी इजाजत नहीं दे रही है
0: तो कुछ तो अगर छूट गए हैं तो अगली बार वो हम शामिल करने की कोशिश करेंगे अगली बार।
1: तो अब हम लेते हैं विदा, नमस्कार।
0: नमस्कार। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, सुबह के 8 बजने को है।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में

0: दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्यौता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक

0: योजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
1: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
3: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट यूजी पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
2: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avion, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase, with India participating as a partner country. All

जब भी राजस्थान की बात होती है तो हमारी आंखों के सामने सुनहरी रेत के टीले और फिजाओं में गूंजता गीत संगीत, रेत पर चलते ऊंट, ये दृश्य उपस्थित हो जाता है। पर श्रोताओं, राजस्थान केवल स्वर्णिम रेत का अथाह विस्तार, रंग बिरंगी संस्कृति और लोक संगीत की मधुर तानों से सजी धरती ही नहीं, बल्कि ये वो धरती है जहां रेत का हर कण अदम्य साहस की गाथा है, जहां हर किला शौर्य की कहानी कहता है, हर महल इतिहास की गौरव गाथा सुनाता है। इस मरुधरा पर एक से एक वीरों ने जन्म लिया है। आज राजस्थान की धरती पर जन्मे ऐसे ही एक वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती है, जिन्होंने स्वाभिमान, स्वतंत्रता और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहस, पराक्रम और स्वाभिमान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी भी अन्याय के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच लड़ा गया इतिहास प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध कौन भूल सकता है, जिसमें संख्या में कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने अद्भुत साहस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। जीत के बाद भी

सेना न तो महाराणा प्रताप को पकड़ पाई और न ही मेवाड़ को झुका पाई। यह युद्ध वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया।

महाराणा प्रताप ने जीवन भर मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और यह संदेश दिया कि सम्मान और स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर छोड़ी नहीं जानी चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। कठिनाइयां सफलता की राह नहीं रोक सकती। देश और समाज के प्रति कर्तव्य सर्वोपरि है।

श्रोताओ, राजस्थान अपनी रेगिस्तान के लिए भी जाना जाता है, जहां कई इलाकों में पानी के लिए मीलों तक जाना होता है। एक एक बाल्टी पानी बहुत कीमती होता है। आज यानी 17 जून को दुनिया भर में डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे यानी विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है धरती को बंजर होने से बचाना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली सुरक्षित रखना। श्रोताओं, अत्यधिक पेड़ों की कटाई, जल संसाधनों के दुरुपयोग, अनियंत्रित चराई, जलवायु परिवर्तन आदि की वजह से जब उपजाऊ भूमि धीरे धीरे अपनी उर्वरता खोकर बंजर बनने लगती है तो उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में भूमि क्षरण और जल संकट गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज जहां पानी है वहां भी शायद हम एक बाल्टी पानी के लिए तरसने लगेंगे।

श्रोताओं, बारिश का मौसम शुरू ही होने वाला है, तो हमें अब तैयार हो जाना चाहिए जल संरक्षण के लिए। वर्षा जल के संचयन से, तालाबों और जलाशयों के संरक्षण से, ड्रिप सिंचाई और अधिक वृक्षारोपण से हम धरती को मरुस्थलीकरण से बचा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक वयस्क पेड़ हर साल सैकड़ों लीटर पानी को भूमि में संरक्षित रखने में मदद करता है? इसलिए इस बारिश के मौसम में पेड़ जरूर लगाएं, मिट्टी का संरक्षण करें और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएं।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, वक्त है लोक संगीत का। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं लीलाबाई मालवीय और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। शुरुआत कर रहे हैं पारंपरिक गजानन गीत से।

आकाशवाणी इंदौर से इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लीलाबाई मालवीय के गाए मालवी लोकगीत, और उनका साथ दे रही हैं शांता मालवीय।

अभी आप सुन रहे थे मालवी लोकगीत लीलाबाई और साथियों के स्वर में। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। अब वक्त है सुगम संगीत का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं नियम कानून गो की गाई चंद गजलें। आगाज कर रहे हैं जावेद अख्तर की लिखी इस गजल से, जब आईना कोई देखो एक अजनबी देखो, कहाँ पे लाई है तुमको ये जिंदगी देखो।

आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, कलाकार हैं नियम कानून गो। अभी जमीर में थोड़ी सी जान बाकी है,

अभी ज़मीर में थोड़ी सी जान बाकी है, अभी हमारा कोई इम्तिहान बाकी है। लीजिए अब सुनिए जावेद अख्तर की लिखी ये गज़ल, आवाज़ है नियम कानून गो की।

सुगम संगीत के तहत अभी आपने सुने नियम कानून गो की गाई चंद गजलें। 648 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम सुन पा रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। सुबह के 9:30 बज चुके हैं, वक्त है शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी परवीन सुल्ताना का गाया राग मेघ। एक ताल में निबद्ध विलंबित रचना के बोल हैं एरी जल झरा जाए। तीन ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं बदरवा बरसन लागे। संगीतकार हैं तबले पर उस्ताद निजामुद्दीन खान और हारमोनियम पर महमूद धौलपुरी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना विदुषी परवीन सुल्ताना का गाया राग मेघ। संगीतकार थे तबले पर उस्ताद निजामुद्दीन खान और हारमोनियम पर महमूद धौलपुरी। श्रोताओं, आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले हेलो डॉक्टर का विषय है आंखों के विभिन्न प्रकार के रोग और उनका उपचार। इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति कोचर से। फोन करने के लिए फोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में भोपाल से रिले करेंगे जिले की चिट्ठी।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख है विनोद आर्य का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। सागर जिले में गर्मी के मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। इधर जिला प्रशासन और नगर निगम ने बारिश से पहले एहतियात के तौर पर कई आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए हैं ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के केसली से लाडली बहना की राशि अंतरित की। इस अवसर पर उन्होंने देवरी क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने 190 करोड़ रुपए की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। डॉक्टर यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड की धरती ने अपने अंदर गौरवशाली अतीत को संजोकर रखा है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति की सहभागिता और नेतृत्व के माध्यम से आज मध्य प्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ता हुआ भारत को विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग दे रहा है। वर्ष 2026 को प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। कृषक कल्याण वर्ष में सरकार किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था कर रही है। सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश में 44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचित रकबा पहुंच गया है और सरकार का लक्ष्य इसे 100 लाख हेक्टेयर करने का है। वहीं दुग्ध उत्पादन एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आज जरूरतमंदों को आवास, स्वास्थ्य सहित समस्त सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और दमोह सांसद राहुल सिंह तथा स्थानीय विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया ने भी अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर कई जन सरोकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें वृक्षारोपण, योग दिवस की तैयारियां और जन कल्याण शिविरों का आयोजन शामिल है। इनमें प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों की भागीदारी हो रही है। सागर जिले में 12 जून से 18 जून तक 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। अपेक्स बैंक के प्रशासक महेंद्र सिंह यादव ने सागर संभाग के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की विभागीय समीक्षा बैठक जिला सहकारी बैंक के सभागार में बीते दिनों आयोजित की। बैठक में उन्होंने प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में सदस्यता वृद्धि अभियान तथा खरीफ के लिए किसानों को ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री यादव ने कहा किसानों को कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र की योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से अपेक्स बैंक के द्वारा 14 अप्रैल से 30 जून तक 10 लाख किसानों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से 500 रुपए अंश पूंजी तथा 100 रुपए सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उन्हें सहकारी संस्थाओं का सदस्य बनाया जाए, जिसे वे 0% ब्याज सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने समिति प्रबंधकों को सदस्यता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने तथा जिला बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इसकी सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर बीते दिनों कलेक्टर प्रतिभा पाल ने समीक्षा बैठक की। कलेक्टर ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने और परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। नीट परीक्षा के सिटी कोऑर्डिनेटर मनीष गुप्ता ने बताया कि सागर शहर में कुल 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सभी तरह के सुरक्षा इंतजामों और मापदंडों के साथ परीक्षा संपन्न करवाई जाएगी। पुलिस प्रशिक्षण शाला मकरोनिया सागर में संचालित 15वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रशिक्षणार्थियों का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दीक्षांत समारोह में नर्मदापुरम जोन के पुलिस महानिरीक्षक मिथिलेश शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थियों की परेड सम्पन्न हुई। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सागर जिले की चिट्ठी। आलेख था विनोद आर्य का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार के थे। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। श्रोताओं, आपको बता दें, इस गुरुवार यानी कल सुबह 10:32 से 11:02 के बीच प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है आंखों के विभिन्न प्रकार के रोग और उनका उपचार। इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न आप स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति कोचर से पूछ सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर तो सुना ही जा सकता है। इसके अलावा आप इसे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। इस समय सुबह के 10:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एनएच हॉटलाइन कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती जादौन। तो श्रोताओं, चलिए सिलसिला शुरू करते हैं आपकी पसंद के गीतों का। जो नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमें कॉल करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर हैं वो हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो चलिए ले लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार।
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ देवास से।
0: बिल्कुल, अब तो आपकी आवाज़ पहचान में आने लगी है।
1: और आपके क्या हाल चाल है?
0: बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं।
0: चलिए,
1: हमने तो चलो फोन लगा ही लेते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, आज तो मतलब आगाज जो है वो आपके फोन से हो रहा है।
1: जी जी, तो मुझे एक गाना सुनना है, मूवी का नाम है हम तुम्हारे हैं सनम।
0: हम तुम्हारे
1: और गाने के बोल हैं खोए खोए दिन है, डेडिकेशन आपको और मेरी बहन नंदनी योगेश, वो जो श्रोता सुन रहे हैं उन सबके लिए भी रहेगा आज।
0: चलिए, सबके लिए तो
1: खास के लिए भी जो भी खास होगा मेरा वो खास के लिए।
0: चलिए, तो आपकी खास तक भी इस गीत को सुन हम पहुंचा रहे हैं।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। तो ये गीत सुनिए रानू जी की तरफ से।

0: चलिए अब हम बात कर रहे हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
1: जी
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी दीदी नमस्ते, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: आप बोल रही हैं, आपका नाम एक बार फिर बताएंगी?
1: रंजीता जांगड़े
0: जी। कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी? अच्छा, आपने पहले भी कभी कॉल किया है या पहली बार बात कर रही हैं?
1: ये पहली बार है।
0: पहली बार बात कर रही हैं
1: जी।
0: क्या आप आकाशवाणी के कार्यक्रम अक्सर सुनती हैं?
1: जी सुनती हूँ
0: जी। बेमित्रा छत्तीसगढ़ से हमारे पास काफ़ी सारे खत भी आते हैं, हमारे कई नियमित श्रोता भी हैं जो हमसे बात करते रहते हैं, पर आपसे बात करने का मुझे पहला मौका मिल रहा है। आप क्या करती हैं?
1: जी दीदी मैं हाउसवाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ।
0: घर संभालती हैं, बहुत बड़ा काम है ये, पूरे परिवार को संभालना, घर संभालना, और ये तो यूँ

0: लीजिए कि एक तरह से 24 घंटे का काम होता है, है ना। अच्छा, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगी?
1: जी दीदी, अभी ये
0: बताइए कौन सा गीत आपको सुनवाएं।
1: जी दीदी, हम साथ साथ हैं फिल्म का टाइटल सॉन्ग।
0: हम साथ साथ हैं।
1: जी दीदी,
0: होल्ड कीजिएगा आपके।
1: सावन।
0: हाँ जी
1: जी दीदी, प्यासा सावन का मिल पाएगा गीत?
0: प्यासा सावन का, प्यासा सावन का कौन सा गीत?
1: मेघा रे मेघा रे।
0: अच्छा, तो अब आप बारिश के हिसाब से गीत सुनना चाह रही हैं। चलिए आपको प्यासा सावन का गीत सुनवा देंगे। वैसे छत्तीसगढ़ में अभी कोई प्री मानसून वाली बारिश की बौछारें हुई या नहीं हुई?
1: नहीं दीदी, अभी तो
0: अभी तक नहीं हुआ है। चलिए फिर तो बनता है कि हम मेघाओं को बुलाएं, बादलों को बुलाएं और बारिश करवाएं।
1: जी
0: हाँ, चलिए ठीक है। तो आपकी पसंद पर सुनवाते हैं प्यासा सावन फिल्म का एक गीत।
1: धन्यवाद दीदी।

0: आकाशवाणी इंदौर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: दूल्हे सिंह यादव बोल रहा हूँ दीदी, ग्राम बाक्या, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश से।
0: आगर मालवा से दूल्हे सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी।
0: और अभी खेती बाड़ी में क्या चल रहा है?
1: खेती बाड़ी में तो कुछ नहीं दीदी, यहाँ जानवरों के लिए कुछ चरी बा रखी खेत पे
0: जी,
1: और अभी खेतों की जुताई चल रही दीदी।
0: अच्छा अच्छा, तो खेतों की जुताई गर्मी में नहीं हो जाती?
1: हम अभी कर रहे हैं दीदी।
0: इस बार लेट कर रहे हैं?
1: हाँ।
0: ऐसा क्यों?
1: क्योंकि यहाँ पे ये बांध का काम जो चल रहा था तो वो अब रुका हुआ है, तो इसलिए
0: अच्छा
1: उतना कर सकते हैं, करेंगे दीदी, क्या करें।
0: अच्छा, तो इस बार फिर क्या बोने वाले हैं आप?
1: ये सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी जो है थोड़ी बहुत जैसे इधर बौछारें पड़ी, एक दो दिन पानी पड़ा है इंदौर में, तो उधर आगर में भी बारिश हुई?
1: हुई नहीं दीदी, थोड़ी बारिश हुई, उससे मतलब काफी ठंडा थी, मतलब जो तापमान में गिरावट आई है दीदी।
0: अच्छा जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज हम दीदी प्यार जुटता नहीं फिल्म का वो गाना है, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, ऐसे बिहारी का गीत है दीदी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
0: जी जी बिल्कुल, शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है। चलिए, तो आपको जो है ये गीत सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर, और बाकी श्रोताओं के लिए भी हम ये गीत पेश कर रहे हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: लीजिए अब हम लेते हैं अगला कॉल। हेलो हेलो
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
0: एमएच हॉटलाइन में आपका स्वागत है।
1: आरती जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: धर्मपुरी जिला धार से शेख भाई मोहम्मद।
0: नमस्कार शेख भाई, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। आज आपने कौन सा गीत, आपकी पसंद जो है गीतों की भी बड़ी खास होती है।
1: जी जी,
0: तो आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं।
1: रफी साहब का गीत सुनना, साजन की सहेली फिल्म का। बूंदे नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से।
0: बूंदे नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से।
1: कहकशां से,
0: वाह क्या बात है। चलिए तो आपको, आपकी पसंद का ये गीत हम ज़रूर सुनवाएंगे। और आज तो वैसे भी सुबह आपका जिक्र हुआ था
1: जी,
0: ईमेल के जरिए,
1: उसके लिए धन्यवाद
0: जी। आपका मेल बहुत अच्छा लिखा हुआ था, बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बातें उसमें रखी थी
1: जी।
0: तो कोशिश हमारी होती है कि हम पूरा पढ़ें, समय की कभी कमी के कारण कुछ एक कभी छूट जाते हैं।
1: पूरा पढ़ा और बड़े अच्छे तरीके से उसको पढ़ा
0: जी, शुक्रिया।
1: मतलब देखो, लिखना एक अलग होता है, उसको जब पढ़ा जाता तो किस तरीके से उसको पढ़ना, तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, और वही खूबसूरती आपने बढ़ा दी मेल की।
0: शुक्रिया शुक्रिया। वैसे तो ये खैर ईमेल था, पर मुझे याद है आपके खत भी जब आते हैं तो बड़ी खूबसूरत राइटिंग में होते हैं
1: जी जी।
0: पर कभी कभी जो वो है उस तरह से लिखे होते हैं कि हमारे लिए पढ़ना असंभव हो जाता है, हम समझ नहीं पाते, तो बजाय गलत नाम पढ़ें उसके कभी कभी हमको ना चाहते हुए भी छोड़ना होता है वो नाम। तो सभी से गुजारिश है कि जी जी जी, शुक्रिया। और लीजिए अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद आपकी।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे। वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इस समय आप सुन रहे हैं MH हॉटलाइन। हम लेते हैं अगले श्रोता का कॉल। हेलो,
5: नमस्कार सर जी।
4: नमस्ते।
5: फिल्म है जय चित्तौर।
4: हाँ, अनोखे लाल जी का फोन है ये, जो हम आवाज से ही समझ गए, इसलिए आपने बताया ही नहीं नाम। चलिए, जय चित्तौर फिल्म का गीत
5: समर्पित है
4: जी
5: हमारे महाराणा प्रताप को समझने वाले जो भी है उनको समर्पित है।
4: बिल्कुल, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, और जिन्होंने अपने स्वाभिमान में, अपने जमीन की, अपने वतन की रक्षा के लिए कभी सिर झुकाया नहीं, जीवन भर संघर्ष किया। कौन सा गीत सुनवा दें इस फिल्म का?
5: और विशेषकर कर्णी सेना को समर्पित है
4: जी,
5: पवन वेग से।
4: पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े।
5: हाँ,
4: चलिए अनोखे सिंह जी, आपकी अनुरोध पर ये गीत हम सुनवा रहे हैं सभी श्रोताओं को।
5: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम का अगला कॉल लेते हैं. हेलो, एम एच हॉटलाइन.
1: जी नमस्ते मैम.
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: इंदौर से जीनत परवीन, कोहिनूर कॉलोनी से.
0: जीनत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में.
1: जी शुक्रिया.
0: कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ मैम.
0: बढ़िया है
1: जी, बढ़िया.
0: और आप गृहिणी हैं या फिर आप कुछ काम करती हैं बाहर? गृहिणी हैं, घर संभालती हैं. जी, अक्सर ऐसा लगता है लोगों को कि अगर आप घर संभाल रहे हैं तो उसमें कुछ खास नहीं है, पर मुझे लगता है कि घर संभालना जो है वो बहुत ही बड़ा काम है. उतना आसान नहीं है बच्चों को संभालना, घर के अन्य सदस्यों को संभालना, उनकी हारी बीमारी में देखरेख करना, है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है. क्या आप अपने, कई बार तो खुद के लिए बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता है.
1: जेंट्स को तो यही लगता है कि फिर भी कुछ भी नहीं रहता, बस खाना पकाओ होगा.
0: हाँ बिल्कुल सही है. एक दिन अगर पूरा सुबह से शाम तक घर संभाल करके देखें तो शायद पता चले कि कितना कुछ रहता है जो करना होता है.
1: अब सब्जी तो अपन चलते फिर से बना लो, मगर रोटी में पूरा पसीना आ जाता है.
0: बिल्कुल, और खासतौर पे ऐसे में, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, आप ऑफिस में एसी में बैठ के काम कर सकते हैं, पंखे में कर सकते हैं, पर रसोई के अंदर पंखा भी नहीं चला पाते हैं क्योंकि आग का काम होता है.
1: जी सही है ना.
0: ऐसी उमस में और फिर सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है. चलिए, कौन सा गीत आज आप सुनेंगी?
1: मुझे सुनना है एक मुसाफिर एक हसीना का.
0: जी.
1: मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं.
0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया ये खूबसूरत सा

0: इस खूबसूरत से गीत के बाद चलिए अब सुनते हैं कि अगली फरमाइश हमारे पास क्या आने वाली है। हेलो हेलो, एमएच हॉटलाइन
1: मैडम
0: जी।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: अनिल दामनिया लाभे बेरू से बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार अनिल जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है मैडम, आप
0: बढ़िया
1: कैसे हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं,
1: बढ़िया रहना चाहिए।
0: हाँ बस स्वस्थ रहें, ये जरूरी है। बताइए आज आपकी पसंद क्या है?
1: आज मेरी पसंद है फिल्म कोरा कागज। बोले मेरा जीवन कोरा ही रह गया, कोरा कागज।
0: बहुत प्यारा सा गीत है, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया।
1: हाँ।
0: वैसे हमारी सबकी कोशिश होती है कि हमारे पूरे जीवन में हमारे उस कागज पर जरूर कुछ लिखा हो, हम जरूर कुछ करके जाएं, पीछे कुछ निशान छोड़ करके जाएं।
1: जी।
0: आपको क्या लगता है अनिल जी, आपने अभी तक आप अभी भी सर्विस में हैं या फिर
1: अभी सर्विस में हैं
0: तो आपको क्या लगता है, ऐसा लगता है जब पीछे मुड़ करके देखते हैं कि आपने काफी कुछ किया है अपने जीवन में और थोड़ा जिससे हमको संतुष्टि हो कि हाँ मेरा जीवन जो है वो ऐसा कोरा नहीं रह गया, मैंने कुछ किया है?
1: हाँ ऐसा तो है मैडम, पूर्व में जैसे जो अपन ने काम किए
0: जी
1: वो पूरे हुए या नहीं हुए उसको आगे और बढ़ाने की कोशिश करें।
0: बिल्कुल
1: आगे करते रहे।
0: बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। चलिए तो आपको जो गीत पसंद है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: श्रोताओं, हम ले रहे हैं अगला कॉल, देखते हैं कौन से श्रोता कॉल पर हैं। हेलो हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से आरती जी।
0: नमस्कार प्रेम सिंह जी, हमारे कई श्रोताओं का कहना होता है कि आपके भी कॉल जो हैं वो लगातार आते रहते हैं, और अगर किसी का कॉल कभी नहीं जुड़ पाता है तो फिर ये है, तो आपके ज़रिए ही बाकी सभी श्रोताओं से भी मेरा अनुरोध यही है कि बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, कोशिश करें कि किसी भी कार्यक्रम में अगर एक बार आपका कॉल शामिल हो गया है तो 15-20 दिन तक आप कॉल ना करें और दूसरे श्रोताओं को हमसे जुड़ने दें, आप भी उन सभी से जुड़ पाएंगे।
1: बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको
0: जी।
1: वैसे हम तो कार्यक्रम मोबाइल पे सुनते हैं और फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ होता है बहुत कम समय में फोन लगाना चाहते हैं, जैसे कि एक दो बार, मेरी बात सुनिए आप
0: जी,
1: जैसे कि एक दो बार डायल करें और वो चाहते हैं कि हमारा कॉल कनेक्ट हो जाए।
0: हाँ, तो वो नहीं हो पाता है,
1: ऐसे आपका कॉल कनेक्ट बिल्कुल नहीं होगा,
0: थोड़ा समय लगता है, ये जरूरी है।
1: आप एक घंटे का कार्यक्रम पेश कर रहे हैं तो आप एक

0: हफ्ते तक लगातार कोशिश करिएगा, आपका कॉल जरूर मिलेगा। आपको ऐसे किसी को भी नहीं बोलना पड़ेगा कि आप रुकिए और हम कॉल करें।
1: चलिए आज तो, हाँ आज तो आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवाते हैं, पर अब अनुरोध रहेगा कि किसी भी कार्यक्रम में आप 15-20 दिन बाद ही कॉल करें।
0: जी बिल्कुल।
1: बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाह रहे हैं?
0: मैं एक घटा मेरे संग संग चल वाला गीत सुनना चाहूँगा।
1: फिल्म का नाम आपको याद है?
0: जी आपकी फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, या फिर आप कोई सा भी थोड़ा सा सॉन्ग सुनवा दीजिएगा और अगले श्रोता को ले लीजिएगा।
1: आपका गीत हम जो है वो जरूर सुनवाएंगे। कोई और गीत?
0: कोई सा भी आप गीत सुनवा दीजिएगा एक दो मिनट का और नेक्स्ट श्रोता को ले लीजिएगा।
1: आपको घटा से ही जुड़ा हुआ अगर कोई गीत सुनना है
0: जी
1: तो चलिए आपको घटा वाला गीत सुनवा देते हैं। ये अभिनेत्री फिल्म का एक गीत है।
0: जी बिल्कुल।
1: चलिए सुनिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।

हेलो एम एच हॉटलाइन। हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको आवाज़ आ रही है?

0: तो आपका कहना है कि 2-3 महीने बाद आपका कॉल लगा है।
1: नहीं मैंने लगाया ही, मतलब लगाया भी नहीं था, सिर्फ सुन रहा
0: चलिए,
1: था
0: बहुत
1: आपको।
0: अच्छा किया, धन्यवाद आपका। और 2-3 महीने बाद आपने कोशिश की और आपका कॉल लग गया है, इस बात की हमें खुशी है।
1: हाँ वो इसको ब्लॉक कर दो 2-3 महीने के लिए,
0: चलिए,
1: ये जो अभी अभी फोन आया था ना उसका।
0: अभी वो जो है हम लाइन लाइन से फोन लेते हैं। इस तरह से हम अपने श्रोताओं को ब्लॉक नहीं करना चाहते, बस हम चाहेंगे कि हमारे सभी श्रोता आपकी तरह जिम्मेदार हो जाएं और
1: मैं भी
0: अपने
1: आता है।
0: आप ही 2-3 महीने बाद कॉल करें, जिससे कि सभी को मौका मिलता रहे। तो ये
1: हाँ
0: बात
1: वो प्लान
0: अच्छी
1: जरूर
0: लगी जो
1: होता
0: आपने की,
1: है। हाँ
0: है ना। चलिए
1: हाँ
0: बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे।
1: वो रजिया सुल्तान का है,
0: रजिया
1: दादा।
0: सुल्तान, वाह, बहुत खूबसूरत सा गीत है,
1: हाँ
0: बहुत ही प्यारा गीत है ये। खास
1: हेमा
0: तौर पे
1: मालिनी
0: इसका
1: का।
0: जो संगीत है,
1: हाँ
0: ठहर ठहर के जो चलता है, वो बहुत ही
1: हाँ
0: खूबसूरत बना देता है इस गीत को।
1: इतना बढ़िया लगता है ना,
0: जी
1: रेत पे,
0: बहुत,
1: रेत पे वो
0: हाँ,
1: रेत पे गाती है हेमा मालिनी जी।
0: हेमा मालिनी जी इसमें हैं, साथ में धर्मेंद्र भी इसमें हैं,
1: हाँ
0: और खयाम साहब का ये खूबसूरत सा संगीत
1: संगीत
0: है, आवाज़ है लता जी की, और सब ने मिलकर के जो एक जादुई इस
1: गीत
0: गीत को
1: बनाया,
0: बनाया है।
1: बहुत बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया लगता है।
0: चलिए, मुझे भी ये गीत बहुत पसंद है और आपने ये पसंद की है, तो
1: हाँ
0: ये गीत ही आज हमारे कार्यक्रम का जो है वो आखिरी गीत बनने वाला है। तो आप भी
1: हाँ
0: सुनिए और बाकी सभी श्रोताओं को भी ये गीत हम सुनवा रहे हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए। आरती को नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन,
0: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। अगला कार्यक्रम रिले किया जाएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
2: जन्म जन्म के साथी हैं हम, रूठेंगे तो मिल लेंगे, यह कहकर आवारा बादल धरती को बहलाता है। बेमौसम का ये सावन भी कितना भोला भाला है, फेंक कर सागर में कंकड़ अब खुद ही शोर मचाता है। श्रोताओं नमस्ते, मैं हूं नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूं आज का फोन इन प्रोग्राम फोन करें गीत सुने। हमारे इस कार्यक्रम में डायल करना होता है फोन नंबर 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता के साथ।
3: नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं रानी कलिये छतरपुर से रशीद अहमद खान बात कर रहा हूँ सर।
2: जी जी, कैसे हैं?
3: एकदम सही मैम, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, एकदम सही। आप लोग कैसे हैं? पूरी टीम आकाशवाणी भोपाल की सब अच्छी
2: जी
3: है?
2: हम सभी बहुत अच्छे हैं और जो गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है उससे बहुत खुश हैं। और
3: जी
2: हाँ, तो ऐसे सुहाने मौसम में अहमद खान साहब, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
3: गीत तो बहुत सारे हैं, एक गीत चॉइस करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन एक थोड़ा सा अलग तरह का गीत है, वो मैं सुनना चाहता हूँ। नई उम्र की नई फसल फिल्म का नाम है।
2: जी जी जी, नई उम्र की नई फसल का कौन सा गीत?
3: स्वप्न झरे फूल से, नींद चुभे सूल से।
2: जी जी जी जी,
3: टूट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
2: जी, नीरज जी का लिखा हुआ, ये बहुत ही शानदार गीत है।
3: एक अच्छा गीत है, इसके मतलब इबारत इसकी बहुत अच्छी, शब्दों का जो विन्यास है
2: जी जी जी
3: बहुत शानदार है इसका, मतलब इतनी अच्छी नीरज साहब ने लिखा है, बहुत
2: जी,
3: अच्छा गीत है।
2: जी जी जी, उनकी कालजयी रचनाओं में से एक है ये।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: हेलो, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मालिनी दीदी, इशारा सा प्रेम, प्यार से नमस्कार।
0: जी
1: मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आलिनी दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी नमस्कार, कैसे हैं शारदा जी?
1: दीदी मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा से घर परिवार में सब लोग आनंद मंगल से रहते हुए आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो मथुरा तो है, तो वहाँ का तो सुरीला सा मौसम होता है, वहाँ का वातावरण ही बहुत अच्छा है
1: जी। इस वक्त दीदी मंद मंद हवाएं चल रही हैं और खिली खिली धूप है और तापमान भी गिरकर लगभग 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है।
0: हाँ।
1: और रात में यही तापमान 30 के आसपास बनता है।
0: मौसम जो है वो कुछ खुशनुमा हो चुका है।
1: संदेह बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है, मंद मंद पवन प्रवाहित हो रही है।
0: हाँ, और जब कभी छींटे पड़ते हैं बारिश के तो और भी ज्यादा आनंद आता है, और हम इंतजार भी कर रहे हैं बेसब्री से कि मानसून आ जाए, मसावन हो। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: बस बरसात की और मानसून की बातें चल रही हैं,
0: हाँ,
1: तो एक ऐसा ही गीत है जीवन मृत्यु में।
0: जीवन मृत्यु।
1: जी
0: जी जी कौन सा?
1: लता और रफी ने गीत को गाया है।

0: हम पप्पू बोलते हैं, पप्पू सिंह बोलते हैं। बढ़िया जी जी।
1: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? आपका पूरा परिचय तो दीजिए।
0: जिला बांदा तहसील नरेनी से बोलते हैं।
1: जी जी जी, कैसे हैं?
0: बढ़िया है दीदी जी।
1: अच्छा,
0: नीतका जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: आपसे पहली बार बात हो रही है दीदी जी।
1: अच्छा हाँ, मुझे भी ऐसा लगा पप्पू सिंह जी, और नाम से भी कई बार हम लोग लोगों को पहचानने की कोशिश कर लेते हैं कि हाँ हमारी शायद बात हुई है। है ना
0: जी।
1: कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
0: हीरो फिल्म का गीत सुना दीजिए
1: जी। कौन सा?
0: लोगों से सुना, किताबों में लिखा, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं।
1: जी जी जी।
0: और दीदी जी हमारे साथ प्रेमदास बाबा हैं, सुन रहे हैं, फूल चंपाल भी सुन रहे हैं।
1: बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया पप्पू सिंह जी। नमस्ते।

0: नमस्ते मैडम
1: जी, आपका परिचय बताइए।
0: जी दमो से बोल रहे हैं, गिरधारी से।
1: जी कैसे हैं?
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं मैडम
1: जी? हम तो बहुत अच्छे हैं।
0: जी जी मैडम,
1: आज फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: मैडम जी हमको गाना सुनना है ये नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, और शेरा वाली ऊंचे डेरा वाली बिगड़े बना दे मेरे काम।

0: नमस्कार मैम, नमस्कार। अम्बेडकर चौक टेगरवाड खड़ई से आपका दोस्त राम सखी परमानंद
1: जी। परमानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं
0: मैम? ठीक हैं हम, बढ़िया हैं
1: जी। चलिए परमानंद जी, आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: मैंने प्यार किया का
1: कौन सा
0: टाइटल सॉन्ग?

0: अग्रवाल
1: जी, कैसे हैं अरविंद अग्रवाल जी?
0: बढ़िया हैं, आप कैसी हैं?
1: हम भी अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप? शहर का नाम?
0: श्रीनगर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश।
1: जी जी जी
0: जी, आज किन मैम से बात हो रही है?
1: आज मैं नीतिका वर्मा हूँ। तो अरविंद अग्रवाल जी, आज आपने फोन किया है फोन करें गीत सुने में, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज?
0: जी, फिल्म का नाम रहेगा यार आना, छू कर मेरे मन को।

0: बद्री प्रसाद कुशवाहा, ग्राम हथेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ मैम।
1: जी कैसे हैं बद्री प्रसाद जी?
0: बढ़िया हूँ मैम
1: जी। क्या कुछ कर रहे हैं इन दिनों?
0: इस समय खेती की तैयारी हो रही है मैडम।
1: अच्छा, क्या कुछ लगाएंगे?
0: जी धान।
1: चलिए, तो उसके लिए तो आपको बारिश का इंतजार होगा, कब झमझम पानी बरसे।
0: जी जी जी।
1: अच्छा, कार्यक्रम में आपके गीत की कौन सी फरमाइश है?
0: मोहरा का सुना दीजिए मैम, ना कजरे की धार।
1: जी

0: हरदयाल जाटव जलाशय त्री मत
1: जी
0: त्रिपुरी जलाशय।
1: कैसे हैं?
0: बढ़िया मैडम जी, आप कैसी हो?
1: हम बहुत अच्छे हैं।
0: हमारा बढ़िया गाना सुना दीजिए।
1: हाँ बिल्कुल, आज तो आपका ही पसंद का गीत है जो वो आएगा, तो आपका अनुरोध किस गीत के लिए है?
0: हमें सुना दीजिए जुड़वा फिल्म का, दुनिया में आई हो तो लव कर लो थोड़ा थोड़ा, जी थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: जी जी जी बिल्कुल, ये गीत आपके रेडियो सेट पर लीजिए।

साजी लो थोड़ा थोड़ा मर लो।

0: हेलो
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं सोमत सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से। जी
0: सोमत
1: मैं
0: सिंह,
1: बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं अखैरियत से हूँ जी। हाँ, कौन मैडम बात कर रही हैं?
0: मैं नीतिका वर्मा। जी जी कैसे हैं?
1: जी, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। आप बताइए क्या हाल चाल है।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आज कौन सी पसंद का गीत है आपका?
1: आज मुझे आप सुनवा दीजिए, सीमा फिल्म का गीत है तू प्यार का सागर है,

0: मैं कविता कंदारी सतना से।
1: जी कविता जी, कैसी हैं?
0: बढ़िया।
1: और आज आपका कौन सा अनुरोध है, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: सत्यम श्याम सुंदरम का
1: कौन सा गीत?
0: ईश्वर सत्य है।
1: टाइटल ट्रैक।
0: हाँ
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका ये गीत, हम आपके रेडियो सेट पर जरूर भेज रहे हैं। और क्या कुछ करती हैं कविता जी,
0: मैं घर में काम करती हूँ
1: और रेडियो हमारे सुनते हैं कि नहीं?
0: बहुत। मैं बचपन से सुनती हूँ,
1: तभी तो हम कह रहे हैं, तो फिर रेडियो भी सुनती हैं आप, बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत दीवानी हूँ मैं रेडियो की।
1: तो ये इसकी दीवानगी ऐसी है ना कि अगर डिस्टरबेंस हो गया किसी दिन, या किसी दिन लाइट नहीं है, या किसी दिन बैटरी खत्म हो गई है, तो फिर आदमी झंझला जाता है कि आज हमें कब मिलेगा सुनने को, है ना?
0: मेरे को मतलब जैसे खाना जरूरी है ना, वैसे रेडियो जरूरी है।
1: चलिए, आपकी ये दीवानगी हमें बड़ी अच्छी लगी।
0: सवेरे से ही चालू कर देती हूँ।
1: शुक्रिया आपने फोन किया, आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का गीत सत्यम शिवम सुंदरम का।

0: याद उसे भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रस्ते में उसने हमको पहचाना तो होगा। कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें, जो ये फ़र्क समझ लेगा वो दीवाना तो होगा। तो श्रोताओं, आपके रेडियो के लिए ये समर्पण, आपकी दीवानगी हमें बहुत अच्छी लगती है। फ़ोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में। आज बस इतने ही फ़ोन कॉल हम ले पाए। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर और ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभयारण्य भी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, साथ ही कुछ विधेयक भी सदन पर प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान नागरिक संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको लेकर उच्च स्तरीय समिति नागरिकों से सुझाव लेकर जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भारत महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला कल सुबह उरुग्वे के साथ होगा और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन के लीड्स में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है घंटाघर चौक खंडवासी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। दूसरी फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि और संदीप पाटिल। आप सबने सुनना चाहा है लम्हे फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और ए हरिहरन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत बाजीगर फिल्म से विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजें हैं। गुहर कानपुरी का गीत और अनु मलिक का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और नवीद खान। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेत और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने आप सबने सुनना चाहा है कोयला फिल्म का ये गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक साथी साथियों की आवाजें हैं और इंदिवर का गीत, राजेश रोशन का संगीत।

1942 आई लव स्टोरी लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा जिसे आवाज दी है कुमार सानू ने, जावेद अख्तर का गीत और आर डी बर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और विनोद आर्य ने। कोटवा नारायणपुर से बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अनिल कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए ये गीत।

0: इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह!
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: इस समय आप हैं हमारे साथ।
5: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की 12वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना, बलबीर स्वामी शास्त्री जी को अवगत कराता है कि जल्द ही अगर कुछ न किया गया तो मजदूर हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। शास्त्री जी हड़ताली मजदूरों का पक्ष लेकर ठाकुर साहब से बात करते हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाता। हड़ताल जारी रहती है। बसुमती नारायणी से मुंशीगंज वालों द्वारा अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना सुनाती है। रोटी के लिए लड़ रहे जानवरों से हड़ताली मजदूर का एक भूखा बच्चा रोटी छीनने जाता है तो जानवर उस पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इससे दलितों की बैठक में दहशत फैल जाती है। यूनियन का सचिव कालूराम नारायणी से मिलता है और उसे ठाकुर साहब के कपड़े धोने के काम पर वापस आने के लिए कहता है। नारायणी सोचकर जवाब देने की बात कहकर उसे टाल देती है। हड़ताली मजदूरों का जुलूस नारे लगाते हुए आगे बढ़ता है। यशवंत को रोता हुआ भृगु मिलता है। भृगु बताता है कि उसकी लड़की पार्वती भाग गई है। ये सुनकर यशवंत चौंक जाता है। अब आगे।

0: देख रेगु, चुप हो जा और सारी बात मुझे तू साफ साफ बता, शायद मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। भृगु,
1: मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे यशवंत, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं।
0: अरे धैर्य रख, हिम्मत से काम ले भृगु, हिम्मत से काम ले।
1: मेरा धैर्य टूट चुका है, हिम्मत जवाब दे चुकी है।
0: हाँ?
1: जिसके घर की आबरू चली जाए, घर की जवान लड़की किसी गैर के साथ भाग जाए, वो क्या मुंह लेकर जिएगा, क्या मुंह लेकर।
0: लेकिन फिर
1: मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। साई नदी में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगा, जान दे दूंगा मैं अपनी।
0: रुक जा भृगु, भृगु रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा भृगु, भगवान के लिए रुक जा।
1: मैं साई नदी की गोद में समाने जा रहा हूँ, तू वापस लौट जा यशवंत।
0: तुझे तेरी माँ बसुमती काकी की सौगंध भृगु, माँ विंध्यवासिनी की कसम, रुक जा भृगु, रुक जा। रुक जा भृगु, रुक जा। देख, मुझ पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। पहले पहले तू ये बता कि ये सब हुआ कब।
1: कल शाम को।
0: किसके साथ गई?
1: पेट की भूख मिटाने के लिए पीस वर्करों के पास जाया करती थी।
0: हाँ?
1: उनसे खाना मांगती थी, मगर मगर कल शाम को
0: क्यों? पीस वर्करों के पास जाती थी? अब क्या कोई पीस वर्कर भी फरार है?
1: राजा राम नाम का एक वर्कर भी कल शाम से दिखाई नहीं पड़ रहा। साइट पर जाकर पूछा तो पता लगा कि राजा राम और पार्वती को आखिरी बार कल शाम स्टेशन पर देखा गया था।
0: इसका मतलब दोनों कल शाम वाली पैसेंजर ट्रेन से निकल गए। अब भृगु, तूने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई क्या?
1: नहीं भाई।
0: मुझे तो लगता है कि वर्क साइट पर गश्त लगाने वाले कांस्टेबलों का भी इसमें हाथ होगा। पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखानी होगी, पुलिस पार्वती को जरूर ढूंढ निकालेगी और इस राजा राम का अपराध साबित होगा और उसे सजा जरूर मिलेगी। भृगु,
1: अपराध राजा राम का नहीं, तुम्हारी यूनियन का है।
0: हाँ?
1: यूनियन के नेताओं का है।
0: ये तू क्या कह रहा है भृगु? अरे होश में तो है तू?
1: नहीं हूं मैं होश में, तुम्हारे नारे सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। तुम लोग हड़ताल करते हो, घर में औरतें और बच्चे भूखे हैं, और तुम्हारी यूनियन।
0: लेकिन भृगु,
1: यूनियन के नेता खलासी लंगर पर बैठकर नशा करते हैं और नशा करके सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारी यूनियन के किसी नेता में त्याग की भावना नहीं है।
0: अरे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती भृगु, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देख, सब इंसान एक जैसे नहीं होते।
1: बिल्कुल ठीक कहा तूने, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। हम लोग सारी जिंदगी कंपनी का काम करते करते बिता देते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा दूसरों की जूठन खाने वाले जानवरों की तरह दुत्कार दिए जाते हैं।
0: अब
1: और अंत में परमानेंट होने की आस लिए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं।
0: अरे भृगु, हमारी हड़ताल का मकसद यही है कि हम लोगों के साथ

0: साथ ये भेदभाव खत्म हो, इंसान बराबर हो, कानून सबके लिए समान हो। लेकिन भृगु, ऐसा तब होगा जब हम सब मिलकर यूनियन का साथ देंगे, अपनी एकता को मजबूत करेंगे, मिलजुल कर एक नई क्रांति को जन्म देंगे तब।
1: खामोश यशवंत, खामोश। तुम्हारी यूनियन की वजह से हमारे घर की लड़की भाग गई। आने वाले दिनों में और खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी।
0: अरे भृगु,
1: तुम लोगों की देह में वीर भगत सिंह जैसा खून नहीं है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते।

0: थी। ये ठाकुर साहब बीमार क्या हुए, हमारा पीना पिलाना मौज मस्ती का काम सब रुक गया।
1: ये बोतल का इंतजाम तो मैंने कर लिया।
0: अरे बाप मेरे भाई, क्या बात है, पर तू इसे लाया कहाँ से?
1: अरे वो कंपनी का पुराना टायर बेचकर इंतजाम किया इस बोतल का।
0: लेकिन बाबू भैया, बोतल के साथ जब तक अच्छा खाने का सामान ना हो, तब तक पीने का मजा नहीं आता।
1: कह तो तू ठीक रहा है रामू, पर अब खाने का इंतजाम कहाँ से करे? अरे जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची।
0: अरे एक रास्ता है बाबू, एक रास्ता है मेरे भाई।
1: तो बताना जल्दी से वो रास्ता।
0: क्यों ना हम कंपनी के भंडार में रखी हुई जिलेटिन की छड़ों की चोरी करें, है? और उन छड़ों का विस्फोट हम साई नदी में करें, बहुत सी मछलियां मर जाएंगी और उन्हें भून कर खाने का मजा आ जाएगा।
1: अरे वाह! पर रामू, अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो?
0: अरे उसकी चिंता मत कर, स्टोर कीपर मेरी जान पहचान का है।
1: अच्छा।
0: अरे पैग दो पैग उसे भी पिला देंगे।
1: अरे ये तो ठीक रहेगा। चल चल चल चल चल चल चल
2: अरे भाई सुनो, ठाकुर साहब से कहो कि राधे श्याम उनसे मिलना चाहता है।
3: कौन राधे श्याम?
2: लेबर इंस्पेक्टर का सहायक।
3: अच्छा अच्छा, आप अंदर जा सकते हैं, ठाकुर साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं।
2: नमस्कार ठाकुर साहब।
4: नमस्कार।
2: कैसी तबीयत है ठाकुर साहब?
4: पहले से बेहतर है, आओ बैठो।
2: माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूँ। आपका आदेश मिला तो आपके दर्शन करने चला आया।
4: अच्छा।
2: रामू मामू कह रहे थे कि आपको मुझसे जरूरी काम है।
4: अरे भाई तुम तो जानते ही हो कि कंपनी के मजदूरों की एक महीने से हड़ताल चल रही है।
2: सुना है इस हड़ताल की चर्चा लखनऊ होते हुए दिल्ली तक पहुँच चुकी है।
4: भाई यही तो समस्या है, कंपनी पर लगातार दबाव आ रहा है कि मजदूरों के साथ जल्दी से जल्दी समझौता किया जाए। तुम लेबर इंस्पेक्टर के सहायक हो, घुटे हुए हो, तुम ही बताओ कि क्या किया जा सकता।
2: मजदूरों की यूनियन का सरपरस्त लोकल लीडर शास्त्री है ना?
4: उसका नाम ललो मेरे सामने। उसी की वजह से तो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा।
2: मेरी मानो तो उस शास्त्री को खरीद लो, समझो कि हड़ताल की समस्या से छुटकारा मिल गया।
4: अरे राधे श्याम, वो बिकने वाला नहीं है, नहीं तो कंपनी उसे कब का खरीद चुकी होती।
2: ठाकुर साहब, पीतल के भाव सोना बिकते हुए देखा है कभी?
4: नहीं तो।
2: लेकिन आपने यही करने की कोशिश की है, आप थैली का मुंह खोलिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए।
4: क्या तुम शास्त्री को रुपये के सामने झुका सकते हो?
2: लाठ ठपकाते दौड़ा आएगा शास्त्री। मेरी कमीशन देना मत भूलना।
4: अरे भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी कमीशन तुम्हें पहले ही मिल जाएगी।
2: ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ, अभी बहुत से काम करने हैं मुझे।
4: हाँ ठीक।

0: बर्तन उब गया है, आज तो साग रोटी खाने का मन कर रहा है।
1: अरे जगन्नाथ, मेरा राजा बेटा। देख बेटा, दलितों की बैरक में 20 दिनों से किसी ने भी अन्न का स्वाद नहीं चखा है। बेटा, लोग तो जंगली फल और पेड़ के पत्ते चबा चबा कर पेट भर रहे हैं। एक बेटा तू है जो साई पर जाकर मछलियां पकड़ लाता है, नहीं तो जगन्नाथ हम भी पत्ते चबाने पर विवश हो जाते बेटा।
0: नहीं बापू, आज तो मैं रोटी या भात ही खाऊंगा।
1: नहीं नहीं, देख जगन्नाथ बेटा, जिद नहीं करते।
0: नहीं बापू, मछली खा कर मेरा पेट खराब हो गया है।
1: जगन्नाथ जगन्नाथ, तू मेरा राजा बेटा है। देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे कल साग रोटी जरूर खिलाऊंगा।
0: सच बापू?
1: हाँ बिल्कुल सच।
0: वादा?
1: अरे वादा है बेटा।
0: तो बापू, हाँ, मैं मछली पकड़ने जाऊँ?
1: हाँ हाँ, जा बेटा जा।
0: कल साग रोटी खाने को मिलेगी। हाँ। कल साग रोटी खाने को मिलेगी, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा।
2: भैया बामू।
3: हाँ रामू।
2: साई नदी के तट पर तो हम आ गए। हाँ। अब हमें पानी में जिलेटिन की छड़का विस्फोट कर देना चाहिए।
3: हाँ। रुक रुक रुक रुक। हाँ। पहले चारों तरफ देख ली।
2: हाँ।
3: कोई आसपास है तो नहीं?
2: हाँ देखता हूँ।
3: हाँ, देख, देख, देख। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि हम धरे जाएं और जिलेटिन चुराने के आरोप में हमें जेल की हवा खानी पड़े।
2: अरे कोई नहीं है, चल फटाफट कर दे विस्फोट।
3: कर दूं?
2: ले ले ले, कर।
3: ये ये किया मैंने
2: भैया बाबू भाग। मैंने किसी बच्चे की चीख सुनी है, भाग ले भैया।
3: तो मैंने भी सुनी है।
2: पुलिस भी आ रही है।

0: क्या हुआ क्या हुआ, ये विस्फोट कैसा था?
1: मैंने भी किसी बच्चे की चीख सुनी थी। किसका बच्चा होगा वो?
2: हाँ जरूर ये हड़तालियों की कारस्तानी होगी।
3: हाँ हाँ उन्हीं का काम होगा ये। अरे अरे देखो तो, अरे यहाँ तो जगन्नाथ की लाश पड़ी है। तो क्या वो चीख इसी की थी? अरे अरे बेटा जगन्नाथ तू तो चला गया पर अपने बाप लीचू को जीते जी मार गया तू बेटा।

0: लिचू, लिचू।
1: क्या बात है काका?
0: अरे जल्दी कर, मेरे पीछे आ।
1: माफ करना काका, आज मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लगी हुई है, अभी मैं कहीं नहीं चल सकता।
2: अरे सिद्ध ना कर लिचू, तू इसी वक्त हमारे साथ चल।
1: क्या बात है यशवंत, तुम लोगों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ क्यों है?
2: अरे तू हमारे साथ चल, रास्ते में हम तुझे सब बता देंगे।
1: लगता है कोई कोई गंभीर बात है। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलता हूँ।
0: अपना जी कड़ा कर ले लीचू, अपना जी कड़ा कर ले।
1: अरे बात क्या है काका, आप लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है?
2: अरे धीरज रख लीचू भाई, थोड़ी देर में तेरी समझ में सब आ जाएगा, बस तू हमारे साथ चल।
1: चल चल चल चल चल चल।

0: जगन्नाथ जगन्नाथ मेरे बेटे, अरे क्या हुआ तुझे, ये झुलस कैसे गया? अरे कोई बोलता क्यों नहीं बोलता, मेरे जगन्नाथ को क्या हुआ है? अरे क्या हुआ जगन्नाथ?
1: अरे तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा लिचू, नहीं रहा।

0: तू झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। अरे मेरा बेटा मर नहीं सकता, मर नहीं सकता, नहीं मर सकता मेरा बेटा। अरे मेरा बेटा तो साग सब्जी खाएगा। उठ उठ बेटा उठ, चल चल चल चल घर चल घर चल। मैं तुझे साग रोटी खिलाऊंगा, दाल भात खिलाऊंगा।
1: जगन्नाथ लिचू,
2: अपने आप को संभाल लिचू, अपने आप को संभाल, अपने आप को संभाल
1: लिचू। क्या हो गया रे लिचू, हिम्मत से काम ले लिचू।

0: सुनो जी, कैसी तबीयत है आपकी?
1: नारायण, जिंदगी से निराश हो चुका हूं मैं। अब तो भगवान से यही दुआ मांगता हूँ कि वो मुझे
0: बस बस, आप ज्यादा ना बोलिए, बोलने से आपको तकलीफ होती है, खांसी भी आती है। जरा हिम्मत करके मुन्ने का ख्याल रखना, मैं भी आती हूँ।
1: नारायणी, तू कहीं जा रही है?
0: जी, बड़ी मेहनतों के बाद अस्पताल में सफाई का काम मिला है। अब मुन्ना दूध के लिए नहीं रोएगा, आपका इलाज भी हो जाएगा।
1: नारायणी, नारायणी तू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है तू। अरे भगवान तेरी जैसी पत्नी सभी को दे, सभी को दे।
0: आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो जाएगी। आप, मैं जा रही हूँ, मुन्ने का ख्याल रखना।
2: दरोगा जी आपसे मिलने आए हैं।
3: दरोगा जी मिलने आए?
2: जी।
3: उन्होंने ये नहीं बताया कि काम क्या है?
2: जी नहीं।
3: ठीक है, अंदर भेज दो।
2: जी बहुत अच्छा। दरोगा जी, ठाकुर साहब आपको बुला रहे हैं।
4: अरे यार, रास्ता दे।
3: आइए आइए दरोगा जी, कैसे आना हुआ?
4: ठाकुर, साई नदी में जिलेटिन का विस्फोट करते हुए पुलिस ने कंपनी के दो मजदूरों को गिरफ्तार किया है।
3: क्या क्या नाम है उन दो मजदूरों का?
4: एक का नाम रामू है और दूसरे का बामू।
3: रामू बामू, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं?
4: उन दोनों का कहना है कि वो आपके आदमी हैं, आप उनकी जमानत लेंगे?
3: मैं उनकी जमानत लूंगा? देखिए दरोगा जी, कंपनी के 4,000 मजदूर यहाँ काम करते हैं, क्या उन सबका ठेका मैंने ले रखा है?
4: यानी आप उन दोनों की जमानत देने से इनकार कर रहे हैं, यही ना?
3: जी बिल्कुल ठीक समझा आपने।
4: ठाकुर साहब, पुलिस ने कंपनी की वर्कसाइट की भी तलाशी ली है।
3: पुलिस ने वर्कसाइट की तलाशी ली?
4: जी हाँ।
3: लेकिन वो किस लिए?
4: इसलिए कि रामू और बामू का बयान है कि विस्फोटक जिलेटिन की चोरी उन्होंने वहीं से की थी।
3: वो झूठ बोलते हैं दोनों।
4: झूठ वो नहीं, आप बोल रहे हैं ठाकुर साहब।
3: देखिए, मुझ पर किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं?
4: आरोप? ठाकुर साहब, पुलिस ने जिलेटिन का सारा भंडार खोजकर सारी विस्फोटक सामग्री अपने कब्जे में ले ली है। वर्कसाइट पर भी गैर कानूनी ढंग से विस्फोटक का ढेर लगाने और विस्फोटक की अलग व्यवस्था ना करने के अपराध में कंपनी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और सुनो, जुर्माना ना भरने की स्थिति में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
3: क्या?
5: शास्त्री जी, कुछ हड़ताली मजदूरों ने विद्रोह कर दिया है। वो लोग हमें जगह जगह तलाश कर रहे हैं, हमें छिप कर रहना पड़ रहा है।
6: तो मैं क्या करूं?
5: आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कंपनी के अधिकारियों से बात कीजिए, इस समस्या का कोई तो समाधान निकालिए।
7: हाँ शास्त्री जी, मजदूरों को अब विश्वास होने लगा है कि हम लोग कंपनी के समझौता पत्र के खिलाफ नहीं जा सकते। मजदूरों ने कसम खाई है कि वो हम यूनियन वालों को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे।
6: तो मुझसे क्या चाहते हो तुम?
5: पिछली बार हम लोग आपके साथ कंपनी के अधिकारियों से नहीं मिले थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, हमें अधिकारियों से मिलना पड़ेगा।
6: सुनो, तुम लोगों को नेता समझना शर्म की बात है।
5: क्या?
6: शर्म की बात? अरे भले ही हड्डियां चूर चूर हो जाएं, देह से मांस सड़कर गिर जाए, लेकिन मजदूरों को दिया हुआ वचन पूरा करना होगा। हड़ताल जारी रखो, समझे तुम?
7: लेकिन शास्त्री जी, अब हमारा मजदूरों के बीच जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ, अगर उनके हक में हमारे पास कोई फैसला हो तो अलग बात है।
6: हाँ, देखो मैं कुछ दिन के लिए मुंशीगंज से बाहर रहूंगा।
7: जी
6: भाई, तुम लोग तो जानते ही हो कि दूर दूर से उधर डालमऊ की तरफ से भी लोग मुझसे मिलने, सलाह लेने आते रहते हैं।
5: हाँ, हाँ। हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए शास्त्री जी, अब हम लोग क्या करें?
6: हाँ, एक काम करो
7: जी,
6: इस बार तुम लोग खुद मिलने जाओ।
5: हम लोग?
6: हाँ हाँ भाई, तुम लोग।
7: ठीक है शास्त्री जी,
5: हम लोग
7: मिलने जाएंगे। चलो बलबीर।
8: माँ, माँ माँ
9: हाँ बेटा
8: आज मैंने भरपेट खाया।
9: क्या खाया बेटा?
8: कच्चा मांस।
9: क्या?
8: बहुत दिनों का भूखा था ना इसलिए।
9: क्या कच्चा मांस?
8: हाँ माँ।
9: कहाँ मिला?
8: वो मुंशीगंज के कसाई है ना,
9: हाँ?
8: वो ही फेंक कर गए थे।
9: बेटा थोड़ा मांस मेरे लिए भी ले आता तो मेरा भी पेट भर जाता।
8: क्या करता माँ, वहाँ इतने सारे भूखे लड़के थे कि पल भर में मिट्टी में सना मांस चट कर गए।
9: बेटा कल तू बाकी लड़कों से पहले पहुँच जाना, हाँ, और जितना भी मिले सब उठा लाना। कम से कम दो एक दिन के खाने का तो इंतजाम हो जाएगा।
8: हाँ।
9: आगे भगवान मालिक है।
8: अरे
9: क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे तुझे उल्टी क्यों हो रही है? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बेटा बेटा बोल ना, बोल बेटा। तू चुप क्यों हो गया है? हे भगवान, अरे इसको तो हाथ पैर भी नहीं हिल रहे। हे भगवान,
7: अरे क्या हुआ?
9: करूं मैं?
7: ये लड़का जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है?
9: देखिए यशवंत बाबू, मेरे बेटे को जाने क्या हो गया है।
7: एक मिनट, है? अरे इसकी तो धड़कन रुक गई है। इसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी
9: है। नहीं नहीं, ऐसा न कहे, ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा बेटा।
7: देखिए, देखो, रोने से अब कोई लाभ नहीं। अब इसे जलाने का इंतजाम करो।
9: नहीं,
7: लेकिन जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होगी। लकड़ी के लिए पैसे कहाँ से हैं? ऐसा करो, इसे साई नदी में ही बहा दो।

0: आ गई नारायणी?
1: जी।
0: क्या बात है, आज बड़ी देर लगा दी आने में?
1: डॉक्टर साहब, मेरे पति की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए आने में थोड़ी देर

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार की 12वीं कड़ी। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% से अधिक है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। यह सत्र 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस 5 दिवसीय सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, साथ ही कुछ विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसको लेकर उच्च स्तरीय समिति नागरिकों से सुझाव लेकर जल्द ही इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। भारत महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला कल सुबह उरुग्वे के साथ होगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेट में आज ब्रिटेन में शाम 7 बजे से भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। और अंडर-17 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए पहली बार युवा लीग मुकाबले 18 जुलाई से छत्तीसगढ़ में होंगे। फाइनल मुकाबला 29 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट में देश की 16 टीमें भाग ले रही हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

इसी व्यस्तता के बीच समय निकालकर आप हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, तो सभी श्रोता सखियों को अपनी दोस्त वंदना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। घर परिवार, दोस्त पड़ोसी, रिश्तेदार और हमारा कार्यस्थल, इन सभी से जुड़ी जिम्मेदारियों का प्रतिबिंब होता है हमारा डेली रूटीन। उसी के अनुसार हम अपने काम पूरे करते हैं। यूं तो हमें इन कामों में मजा भी आता है, पर कभी कभी ये ख्याल भी आता है कि क्या हमारा सारा जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा। घड़ी की चलती सुइयों के साथ हम सबके लिए काम करते हैं, पर इसके बीच में हमारा निजी समय कहाँ है। दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों के बीच जब हम दब से जाते हैं तो लगता है कि हमारा क्या व्यक्तित्व है, हम क्या ढूंढ रहे हैं, किसमें हमारी खुशी है। तब अपनी खुशियों के लिए हम जो समय निकालते हैं वो मी टाइम कहलाता है। मी टाइम यानी हमारा वो निजी समय जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये हमारे वो निजी पल हैं जिन्हें हम स्वयं निर्धारित करते हैं, ये कब होनी चाहिए और किसके साथ। सखियों, मी टाइम केवल समय बिताना ही नहीं है, बल्कि इसके कई फायदे भी हैं जो हमें समझने चाहिए। इसके द्वारा हम अपनी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को रिचार्ज करते हैं, यानी ये दिल और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखने में सहायक है। नई नई चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, यानी खुद को अपग्रेड करते हैं। हम रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि इस समय हम शांत भाव से हर पल को जीते हैं। बाहरी चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर स्वयं पर ही केंद्रित करते हैं, ना सिर्फ अपनी खूबियों को तलाशते हैं बल्कि अपनी खामियां भी ढूंढते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि खुद से ही खुद को मिलवाते हैं। मी टाइम स्पेंड करने के सभी के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने विचार हैं। कई महिलाओं ने अपने ग्रुप बना लिए हैं, फिर चाहे वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हों, एडल्ट वुमन या 50+, वे सभी मिल बैठती हैं, कुछ गेम खेलती हैं, चाय कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ ना सिर्फ निजी बातें शेयर करती हैं बल्कि हर टॉपिक पर खुलकर चर्चा होती है। अब तो मिलने का स्थान केवल घर या पार्क ही नहीं रहा, कॉफ़ी हाउस, रेस्टोरेंट, बोटिंग क्लब भी आज बहनों की गपशप से गुलजार दिखाई देते हैं। सखियों, आप अपना मी टाइम कैसे गुजारती हैं? यकीनन कुछ नया करती होंगी या फिर कुछ ऐसा जो दिल को सुकून दे, क्योंकि खुद से खुद की मुलाकात भी ज़रूरी है। वरना एक दिन आईना पूछेगा, बता तेरा नाम पता। अपने निजी लम्हों में हम इस कदर डूब जाएं कि दिल फिर कोई ख्वाहिश कर बैठे।

बहनों, आप और हम व्यस्त तो सभी रहते हैं, फिर चाहे वर्किंग वुमन हो या हाउस मेकर। खुशी की बात तो ये है कि

0: बहनों, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। कितने ही तीज त्योहार, पर्व, तिथि, मेले, समारोह आदि हम सब मिलजुल कर मनाते हैं। भले ही हम किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के हों, उच्च वर्ग या निम्न स्तर के हों, महिला हों, पुरुष हों या अन्य, सभी में कहीं ना कहीं प्रेम भाव तो रहता ही है। यही प्रेम और विश्वास हमारे देश की परंपरा है, भारत की पहचान है। इसी सार्वभौमिक सोच पर आधारित वार्ता आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वार्ता का शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और मानव एकजुटता। आलेख श्री जवाहर प्रजापति का है। वाचन कर रही हैं आभा गुप्ता। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: उपनिषद में कहा गया है, इकट्ठे चलें, एक जैसा बोलें और हम सबके मन एक जैसे हो जाएं। ये भावना प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसलिए यहाँ राजा और रंक सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ के तत्व चिंतकों ने बिना किसी भेदभाव के मानव मात्र अथवा च प्राणी मात्र के कल्याण की कामना की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात संसार में सब सुखी रहें, सब निरोग या स्वस्थ रहें, सब भद्र दिखें और विश्व में कोई दुखी ना हो। वसुधैव कुटुंबकम एक व्यापक मानव मूल्य है। व्यक्ति से लेकर विश्व तक इसकी व्याप्ति है। गरज ये कि संपूर्ण विश्व इसकी परिधि में समाहित है। ये वैयक्तिक मूल्य भी है और सामाजिक मूल्य भी, राष्ट्रीय मूल्य भी है और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भी, राजनीतिक मूल्य भी है और नैतिक मूल्य भी, धार्मिक भी है और प्रगतिशील मूल्य भी। और यदि इन सब का एक शब्द में समाहार करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये मानवीय मूल्य है। इस मूल्य को सच्चे मन से अपनाए बिना मानवता अधूरी है, मनुष्य अधूरा है, धर्म और संस्कृति अधूरे हैं तथा राष्ट्र और विश्व भी अधूरा और पंगु है। यह मनुष्य की, मानव समाज की, राष्ट्र की अनिवार्यता है। यदि हम विश्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो हमें विश्व बंधुत्व की भावना को आत्मसात करना ही होगा। वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र द्वारा भारतीय मनीषियों ने जिस उदार मानवतावाद का सूत्रपात किया उसमें सार्वभौमिक कल्याण की भावना है। यह देश कालातीत अवधारणा है और पारस्परिक सद्भाव, अंतः विश्वास एवं एकात्मवाद पर टिकी है। स्व और पर के बीच की खाई को पाट कर ये अवधारणा स्व का पर तक

0: विस्तार कर उसमें अभेद की स्थापना का स्तुत्य प्रयास करती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को राष्ट्रवाद का विरोधी मानने की भूल की जाती रही है। जिस प्रकार उदार मानवतावाद का राष्ट्रवाद से कोई विरोध नहीं है, उसी प्रकार वसुधैव कुटुंबकम की भावना का भी राष्ट्रवाद से कोई विरोध नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा शाश्वत तो है ही, यह व्यापक एवं उदार नैतिक मानवीय मूल्यों पर आधारित भी है। इसमें किसी प्रकार की संकीर्णता के लिए कोई स्थान नहीं है। सहिष्णुता इसकी अनिवार्य शर्त है। निश्चय ही आत्मप्रसार, स्व का पर तक विस्तार, स्वयं को और जग को सुखी बनाने का साधन है। वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप समय और दूरी के कम हो जाने से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के प्रसार की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। किसी देश की छोटी बड़ी हलचल का प्रभाव आज संसार के सभी देशों पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। फलतः समस्त देश अब ये अनुभव करने लगे हैं कि पारस्परिक सहयोग, स्नेह, सद्भाव, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भाईचारे के बिना उनका काम नहीं चलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, निर्गुण शिखर सम्मेलन, दक्षेश, G15 आदि वसुधैव कुटुंबकम के ही रूपांतरित नाम हैं। इन राजनीतिक संगठनों से ये तो प्रमाणित होता ही है कि विश्व के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे राष्ट्र पारस्परिकता और सह अस्तित्व की आवश्यकता अनुभव करते हैं, तथा इन अवधारणाओं के बीच वसुधैव कुटुंबकम में निश्चय ही विद्यमान थे। यजुर्वेद के एक मंत्र का सार है कि व्यक्ति द्वारा ये कामना की गई है कि संसार के सभी लोग मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं भी सभी को मित्र की दृष्टि से देखूं, हम सब एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से ही देखें। सच तो ये है कि संसार को देखने की हमारी मूल सोच और दृष्टि यही रही है। व्यक्ति, समाज और देश भी इसी दृष्टि के अनुसार व्यवहार करता रहा है। इसलिए हम विश्व बंधुत्व में विश्वास करते हैं। हमारे जीवन दर्शन के चंद आधारभूत सूत्रों में ये एक महत्वपूर्ण सूत्र रहा है। इस तथ्य को साहित्य और दर्शन में भिन्न भिन्न भावों और भाषाओं में व्यक्त किया जाता रहा है और इसे हम अपने व्यवहार में ढालते रहे हैं। आज पूरा विश्व जिन परिस्थितियों से दोचार हो रहा है, उसमें हमारी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा सर्वाधिक उपयोगी प्रतीत होती है। तकनीक ने फासलों को कम किया है, लेकिन दिलों के फासले तकनीक कम नहीं कर सकती। उसके लिए आवश्यकता है कि भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक दूसरे को समझने और निकट आने की। ये निकटता समय के साथ गहरी होती है और एकजुटता में परिवर्तित हो जाती है। हमारी भावनाएं साझा होने लगती हैं, हमारे सुख दुख एक लगने लगते हैं, हमारी जरूरतें एक दूसरे की हो जाती हैं। इस तरह जो दुनिया बनती है, वह ऐसी दुनिया होती है जिसे हम आने वाली पीढ़ी को सौंपते हुए संतुष्ट भी होते हैं और गर्वित भी। एक ऐसी दुनिया जिसमें एक दूसरे के प्रति द्वेष, घृणा, क्रोध और शत्रुता का भाव शून्य हो। ये पूछा जा सकता है कि ऐसी दुनिया व्यवहार के धरातल पर कैसे संभव है। प्राणी अपने स्वाभाविक गुणों के कारण प्रेम के साथ द्वेष, प्रगति के साथ ईर्ष्या और संयम के साथ क्रोध को भी अपना ही लेता है। ये ठीक भी है, क्योंकि ये तो मानव के स्वाभाविक गुण हैं। तो भी उनका परिमाण इतना अल्प होगा कि समाज पर उसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा। आमतौर पर मानव समाज में जो भावना, जो अंतर संबंध होंगे, वो प्रेम और सद्भाव के ही होंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक सुंदर, कल्याणकारी और श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए मानव एकजुटता समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
1: अभी आप सुन रही थी वार्ता। वाचन स्वर था आभा गुप्ता का और आलेख था श्री जवाहर प्रजापति का। सखियों, हमें आशा है कि ये वार्ता आपको पसंद आई होगी। तो अब कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। सखियों, अभी बात चल रही थी कि मी टाइम को हम कैसे स्पेंड करते हैं, ये तो सबकी व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर करता है। अगर आपकी रुचि योगा करने में है तो यकीनन आप स्वयं को तनाव रहित एवं हल्का महसूस करती होंगी, साथ ही ऊर्जावान भी। ये हम सभी जानते हैं कि योग की शुरुआत हमारे देश भारत से ही हुई थी। ये हमारे ऋषि मुनियों की प्राचीन परंपरा है और उनकी लंबी आयु, तन मन, चमकती त्वचा का राज भी है। योगा प्राचीन काल से किया जाने वाला वो अभ्यास है जो शरीर का लचीलापन बढ़ाता है, तनाव और चिंता को कम करता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। बहनों, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकालकर सभी को योगा करने की आदत डालनी चाहिए। भले ही शुरुआत 10 मिनट से करें और निरंतरता कायम रखते हुए इस समय को बढ़ा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि योग करने के कितने ही फायदे हैं, बस आलस कर जाते हैं। योग से रक्तचाप सुधरता है, यानी दिल मजबूत होता है, मांसपेशियों के लचीलेपन को बढ़ाता है, यानी पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। बस रेगुलर यदि हम योगा करें तो फिर शादी और पार्टी में बढ़िया सा डांस भी कर सकती हैं। छोटी छोटी शारीरिक समस्याओं को दूर करने में भी योग बहुत ही हेल्पफुल है। तभी तो हमें रोज थोड़ा सा समय इसके लिए जरूर निकालना चाहिए। योगा करने से हमारी एकाग्रता में भी सुधार आता है, प्राणायाम और ध्यान से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, परिणाम स्वरूप याददाश्त और फोकस बेहतर होते हैं। तो प्रॉमिस कीजिए कि डेली योगा करेंगी। अगर पहले से ही कर रही हैं तो आप बधाई की पात्र हैं, समझदार हैं, अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। अगर हमें सुबह टाइम नहीं मिलता, हम शाम का समय फिक्स कर सकते हैं। और आजकल गर्मियों में तो हर पार्क में आपको योगा करते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए लोग समूहों में दिख जाएंगे, तो फिर हम भी उन्हीं में शामिल होते हैं, योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाते हैं। निरोगी रहकर अपने वजन को नियंत्रित करते हुए कमनीय काया के मालिक बनकर खुशी से इतराइए और अपनी तारीफ सुनिए।

बहनों, गर्मी के तेवर तो आप देख ही रही हैं। ऐसे में जब वातावरण का तापमान बढ़ता है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को काम करने के लिए अब अधिक पानी की जरूरत होती है। तो हमें गर्मियों में भरपूर पानी पीना चाहिए। बहनों, गर्मियों में हमें अपने खान पान का ख्याल रखना चाहिए। गर्मी में यदि हमारा खान पान गलत हो जाता है तो शरीर में पानी की कमी हो सकती है और इसका नतीजा होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए हमें हरी सब्जियां, पालक, चौलाई आदि का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इनमें पानी तो होता ही है, साथ ही होता है आयरन और कई सारे विटामिन। बहनों, लौकी में भी पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। शरीर में पानी की कमी ना होने दें। डिहाइड्रेशन के लक्षणों को अनदेखा ना करें। डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं जैसे हल्का सिर दर्द होना, जुबान का सूखना, आँखों में भारीपन होना, पेशाब में जलन होना या कभी कभी इसका रंग गहरा पीला हो जाना, उल्टी जैसा मन करना, ये सभी डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। तो इन्हें पहचानें और खूब पानी पिएं। और हम ठंडा दूध पी सकते हैं, छाछ का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी शरीर को किसी भी तरह पानी की पर्याप्त मात्रा दें। प्यास लगने का इंतजार न करें, हर एक घंटे में एक गिलास पानी पीना है। साथ ही हमें 20 किलोग्राम वजन पर एक लीटर पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही नींबू पानी, नारियल पानी या ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का हम सेवन कर सकते हैं। ये शरीर के पानी की आपूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही कोशिकाओं के इलेक्ट्रोलाइट स्तर को भी बैलेंस रखते हैं। बहनों, ये भी समझते हैं कि तरल पदार्थों के साथ साथ कुछ ऐसे ठोस भोज्य पदार्थ भी हैं

जो हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, जैसे खीरा, इसमें पानी के साथ साथ सिलिका भी होता है। तरबूज, इसमें पानी तो भरपूर होता ही है, साथ ही इसमें पोटेशियम भी रहता है। आप कच्चा नारियल खा सकती हैं, कच्चे आम का पना बनाकर पी सकती हैं। बाहर की प्रिजर्वेटिव डले हुए चीज़ों को अवॉइड ही करें। अल्टीमेटली अपने आप को स्वस्थ रखें, खूब पानी पिएं, योगा करें, मी टाइम में स्वयं को और बेहतर बनाने की कोशिश करें और ऐसे ही सुनते रहिए गीत संगीत और रोचक जानकारियों व मज़ेदार बातों से भरपूर आपका और हमारा अपना कार्यक्रम महिला सभा। सखियों, कार्यक्रम के समापन का समय हो चला है, तो लेते हैं आपसे विदा। अपनी सखी वंदना को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा।
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: इस समय आप हैं हमारे साथ।
5: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
6: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर का योगदान है, जिसमें आप सुनेंगे निरंजन कुमार शर्मा के गाए लोकगीत। पहला हास्य गीत, गारी और फिर लोक भजन।

0: रंजन कुमार शर्मा के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है, जिसमें आज आप सुनेंगे पीयूष झा की गाई कुछ गजलें।

0: भरते। गम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: और सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
8: इस समय आप हैं हमारे साथ।
9: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत मोहब्बत फिल्म से, आवाज किशोर कुमार और साथियों की, इंदिवर का गीत और संगीत बप्पी लहरी का।

एतबार। लीजिए सुनिए, इस फिल्म का गीत आवाज़ आशा भोंसले और भूपिंदर की है, हसन कमाल का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

0: या किसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वह यहां 22 जून तक बैतूल, ओंकारेश्वर और जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी और श्योपुर के प्रसिद्ध कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल ओंकारेश्वर पहुंचेंगी, जहां वे भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन व आरती करेंगी। इसके बाद वे रात्रि विश्राम NHDC गेस्ट हाउस में करेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति बैतूल में ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में शामिल होंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति अगले दिन 19 जून को ओंकारेश्वर से सुबह अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति 20 जून को शाम में जबलपुर एयरपोर्ट आएंगी। राष्ट्रपति 21 जून को प्रातः जबलपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम के पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें कॉन्क्लेव समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। माईगांव की एक पोस्ट

0: को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश नाथ काटजू की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विधानसभा परिसर में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधायक भगवान दास सबनानी, विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों के साथ स्वर्गीय काटजू के परिजन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश नाथ काटजू केवल एक राजनेता नहीं बल्कि देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले समर्पित सेनानी थे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी काटजू ने विभिन्न संवैधानिक और प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए देश और समाज की सेवा में अभूतपूर्व योगदान दिया। डॉक्टर यादव ने यहां मीडिया से बात करते हुए नीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार समन्वय में काम कर रही है ताकि पिछली बार जैसी कोई स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
1: के नीट के समय 11 बजे से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर, उनके फॉर्म का वेरिफिकेशन, ऐसे कई काम करेंगे। जहां शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवागमन की थोड़ी कठिनाई है तो वहां बसें बड़े महानगरों में लगा देंगे। साथ ही साथ वहां रिफ्रेशमेंट का सेंटर चालू करने के लिए भी हमने कहा, पीने का पानी, छाया का इंतजाम, ऐसे सारे प्रबंधन सरकार के माध्यम से किए गए हैं। भारत सरकार इस बात के लिए कृतसंकल्पित है कि बच्चों के एग्जाम निर्विघ्न सम्पन्न हो जाए।
0: प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई को आधार नहीं बनाया जा सकता। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव को कल साप्ताहिक जनसुनवाई में 137 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने मौके पर ही निराकरण योग्य प्रकरणों का संबंधित अधिकारियों से समाधान करवाया। पन्ना जिले में भी आज महाराणा प्रताप और बुंदेल केशरी महाराज छत्रसाल जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमरीका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
3: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
2: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने ये उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
5: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
6: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
2: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
7: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
8: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की हिजबुल्लाह और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
9: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्लाह के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है आदर्श नगर मलोट राज से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, बलहरी बड़खेरा से संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेरू पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खान एवं ग्राम पहुरुआ से रामकुमार लोधी, गोविंद यादव और उनके सभी साथियों ने इन्होंने सुनना चाहा है फर्स्ट लव लेटर फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, अनजान का गीत और बप्पी लहरी का संगीत।

करियादंड हट्टा ज़िला बालाघाट से हुलास राम कटारे, नानेश्वरी कटारे, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर रही मेराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट। आप सब ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ कभी कभी फिल्म का ये नगमा। साहिर के लिखे गीत की धुन बनाई है खय्याम ने।

अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तान्या, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं समस्त राजावत परिवार। आप सबने पसंद किया है चांदनी फिल्म का ये गीत, आवाज़ें श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की, गीत आनंद बख्शी का और संगीत शिव हरी का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समय आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश भेजी है गोलाघाट बक्सर से विजय केसरी, गौरीशंकर केसरी, शंभू केसरी, नया बाजार बक्सर से राजेश केसरी, पंकज केसरी, रोहन केसरी, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया। आप सबने पसंद किया है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की है। समीर के लिखे गीत को शुरू में ढाला है नदीम शवण ने।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियों में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक मध्य प्रदेश के प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वे इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कूनो अभ्यारण्य भी जाएंगी। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई जबलपुर उच्च न्यायालय में नए सिरे से होगी। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की नई डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व चीफ जस्टिस की खंडपीठ के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई को आधार नहीं बनाया जा सकता। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए संकेत दिए कि समान संहिता संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई है। प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। और ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज ब्रिटेन में शाम 7 बजे से भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 88.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6 बजे। ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के मध्य लीड्स में खेले जा रहे महिला T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हम आपको 7:21 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनवाएंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:33 पर और रात 11:45। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शाम की सभा में कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 88.32 मीटर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 465.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं ईरा
1: और मैं अनुभूति स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: तो साथियों, आज दिन है बुधवार का और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बुधवार का दिन होता है हमारे और आपके पसंदीदा सेगमेंट एक ही फिल्म से का, जिसमें आज भी हम बहुत ही अच्छी फिल्म आप सभी के लिए लेकर आए हैं, है ना अनुभूति?
1: बिल्कुल, तो बने रहिएगा हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन इरा, उससे पहले हम बता देते हैं हमारे श्रोताओं को कि आज के प्रश्न क्या हैं।
0: बिल्कुल, तो साथियों हमारे कार्यक्रम का पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है?
1: और हमारा दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों यानी कि उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है?
0: तो साथियों, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप सभी को खोजने हैं और सही उत्तर मिलने पर आप हमें ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही हम भी कार्यक्रम के अंत में आप सभी के साथ उत्तर साझा करेंगे ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहला गीत सुन लेते हैं। अनुभूति, मौसम के एकदम मौसम को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एकदम, है ना?
1: बिल्कुल, इंदौर में जो इस वक्त है उन्हें ये गीत बहुत पसंद आएगा, आइए सुनते हैं।

0: साथियों, आज पूरे देश में मेवाड़ के गौरव, अदम्य साहस और स्वाभिमान के साक्षात प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है।
1: साथियों, जब भी इतिहास में वीरता और राष्ट्रभक्ति की बात आती है तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे पहले चमकता है। कुंभलगढ़ में जन्मे इस महायोद्धा ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अकबर की विशाल सेना के सामने जब बड़े बड़े राजाओं ने घुटने टेक दिए थे, तब महाराणा प्रताप ने जंगलों में घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन कभी अपनी मातृभूमि का सौदा नहीं किया।
0: उनकी इसी वीरता पर किसी कवि ने बहुत खूब लिखा है कि जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन टोली डोल गई, फीकी पड़ी दहार शेर की जब जब तूने हुंकार भरी।
1: जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो उनके वफादार और हवा से बात करने वाले घोड़े चेतक को कैसे भूल सकते हैं भला। हल्दी घाटी के इस ऐतिहासिक युद्ध में चेतक ने अपनी वफादारी की जो मिसाल पेश की थी, वो आज भी हर देशवासी की

0: आंखों के में आंसू और सीने में गर्व भर देती है।
1: बिल्कुल, आज महाराणा प्रताप से हम ये सीख सकते हैं इस पावन मौके पर कि उनके जीवन में जिस तरह वे साहस पूर्ण तरीके से आगे बढ़ते रहे, ठीक उसी तरह हमें भी उनके जीवन से ये सीख लेनी चाहिए कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अपने आत्मसम्मान और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।
2: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।

सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

0: 1994 के उस दौर में पहुंचा दिया जहां एक्शन भी था, रोमांस भी था और एक ऐसा सस्पेंस जो स्क्रीन से लोगों की आंखें ही नहीं हटने देता था।
1: बिल्कुल ईरा, आज का हमारा ये सेगमेंट पूरी तरह से इसी को समर्पित है और उस फिल्म को जिसने अक्षय कुमार को खिलाड़ी के साथ साथ एक सॉलिड एक्शन थ्रिलर स्टार बनाया, जिसने सुनील शेट्टी जैसे अभिनेता को एंग्री यंग मैन वाले रूप को अमर कर दिखाया और जिसने रवीना टंडन जैसी अभिनेत्री को नाम दिया द मस्त मस्त गर्ल। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर राजीव राय की कल्ट क्लासिक फिल्म मोहरा की।
0: मोहरा क्या फिल्म थी यार। 3.75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने उस दौर में करीब 22 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया था। और साथियों, आप लोग जानते हैं हम आपके हैं कौन के बाद ये 1994 की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। लेकिन यार अनुभूति, इस फिल्म की बात हम लोग अगर कर ही रहे हैं तो हमें समीक्षा करने से पहले इस दौर के बॉलीवुड को समझना बहुत जरूरी है ना।
1: बिल्कुल सही कहा हीरा, वो 90 के दशक का दौर था जब बॉलीवुड एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। जहां एक तरफ पारिवारिक फिल्मों का चलन था, वहीं दूसरी तरफ कुछ डायरेक्टर्स ऐसी भी फिल्में लेकर आ रहे थे जो बॉलीवुड में लार्जर देन लाइफ हॉलीवुड स्टाइल का थ्रिलर सिनेमा था। मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन था जहां एक ही फिल्म में दो बड़े हीरो, एक दमदार विलेन और एक ऐसा सस्पेंस होता था जो क्लाइमैक्स तक थिएटर में तालियां बजवाता था।
0: और राजीव रॉय की खासियत यही थी, चाहे वो त्रिदेव हो, विश्वात्मा हो या मोहरा, उनकी फिल्मों में कैमरा एंगल्स, बैकग्राउंड स्कोर और एक्टिंग इतनी अच्छी होती थी कि 3 घंटे की फिल्म पलक झपकते ही निकल जाया करती थी। तो चलिए देर किस बात की साथियों, इस सफर को शुरू करते हैं हमारे पहले सबके पसंदीदा सदाबहार गीत के साथ।

0: वाह अनुभूति, विजू शाह जी का म्यूजिक और इंदिवर साहब के लिखे ये बोल। वैसे अनुभूति, तुम्हें पता है कि ये जो गाना है कि मूल रूप से कल्याण जी और आनंद जी ने मुकेश जी की आवाज़ में बहुत पहले रिकॉर्ड करने के लिए सोचा था, लेकिन बाद में इस फिल्म में पंकज उदास जी ने अपनी मखमली आवाज़ में गाया और इस फिल्म का हिस्सा बन गया।
1: बिल्कुल ईरा, और ये गाना फिल्म में विशाल अग्निहोत्री यानी सुनील शेट्टी और उनकी पत्नी पूनम झावर के मासूम प्यार को दिखाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिल्म के पहले सेगमेंट यानी कि इसके प्लॉट की बुनावट कैसी है। मोहरा की कहानी सिर्फ एक सीधे साधे एक्शन की कहानी नहीं है, ये कहानी थी कानून, न्याय और बदले के बीच फंसे तीन मोहरों की।
0: बिल्कुल सही कहा अनुभूति तुमने। फिल्म की शुरुआत होती है विशाल अग्निहोत्री यानी कि सुनील शेट्टी से, जो जेल में अपनी सजा काट रहा है क्योंकि उसने अपनी पत्नी के बलात्कारियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। यहाँ एंट्री होती है एक खोजी पत्रकार रोमा सिंह यानी कि रवीना टंडन की, जो विशाल की कहानी से प्रभावित होकर उसे जेल से बाहर निकालने की ठान लेती हैं।
1: और यहीं पर मास्टरमाइंड मिस्टर जिंदल यानी कि नसीरुद्दीन शाह की एंट्री होती है, जो एक अंधा और अमीर बिजनेसमैन के रोल में उन्हें बताया गया है। वो रोमा के जरिए विशाल को जेल से छुड़वाता है, लेकिन बदले में उसे अपना मोहरा बना लेता है शहर के अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफियाओं को ख़त्म करने के लिए।
0: लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब इस केस की जाँच करने आते हैं हमारे डैशिंग और कड़क पुलिस अफसर इंस्पेक्टर अमर सक्सेना यानी कि अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का वो अंदाज, वो पीली धूप का चश्मा और उनका वो बेबाक एटीट्यूड, यहीं से शुरुआत होती है अक्षय और सुनील शेट्टी के बीच का वो टकराव जो इस फिल्म की असली जान बन जाता है।
1: बिल्कुल, एक तरफ कानून का रक्षक अमर है और दूसरी तरफ कानून से निराश होकर खुद इंसाफ करने निकला विशाल। इन दोनों के इस टकराव और रोमांच के बीच जो आग लगती है उसे पर्दे पर बखूबी उतारा जाता है।

0: क्या बात है ईरा, इस गाने का वो आइकॉनिक हुक स्टेप तो तुम्हें याद होगा,
1: बिल्कुल
0: आज भी हर पार्टी की जान और शान है ऐसे गानों की ये सारी हुक स्टेप्स। वैसे ईरा, क्या तुम्हें पता है कि ये गाना नुसरत फतेह अली खान साहब की एक कवाली से लिया गया था। विजू शाह ने इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक और सिंथेसाइजर बीट्स का इस्तेमाल किया, उसने भारतीय संगीत को एक नया डांस ओरिएंटेड मोड़ दिया था।
1: बिल्कुल। और अनुभूति, इस गाने ने रवीना को रातों रात मस्त मस्त गर्ल भी तो बना दिया था। और अब आते हैं मोहरा के अंतिम और सबसे रोमांचक मोड़ पर, यानी कि इसका क्लाइमेक्स और फाइनल रिव्यू। फिल्म का असली जादू इसके सेकंड हाफ में खुलता है, जब हमें पता चलता है कि जिस अंधे और लाचार मिस्टर जिंदल यानी कि नसीरुद्दीन शाह को हम मसीहा समझ रहे थे, दरअसल वो अंधा है ही नहीं, वो सिर्फ नाटक कर रहा था।
0: वो सीन जब नसीरुद्दीन शाह अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी काली ऐनक हटाते हैं, तो थिएटर में सन्नाटा छा गया था। वो कोई मसीहा नहीं बल्कि खुद सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड और विलेन था, जो अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी दोनों को अपने फायदों के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। नसीर साहब ने जो शातिर विलेन का किरदार निभाया है, उसने इस फिल्म को आम एक्शन फिल्मों से बहुत ऊपर उठा दिया।
1: और फिर जो क्लाइमेक्स होता है, वो पुराना किला, वो गोलियों की बौछार और अमर विशाल का एक साथ आना। अगर इस फिल्म का फाइनल रिव्यू करें अनुभूति, तो मोहरा कमर्शियल हिंदी सिनेमा की एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक है। इसमें बेहतरीन स्क्रीन प्ले है, कल्ट विलन्स है, शानदार डायलॉग्स हैं जो कि दिलीप शुक्ला जी ने लिखे हैं, और सबसे बढ़कर इसका एवरग्रीन म्यूजिक।
0: बिल्कुल सही। आज के दौर में जब हम थिएटर और थ्रिलर फिल्में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं 90 के दशक की इस सादगी और इस सॉलिड स्क्रीन प्ले को मिस करते हैं। मोहरा एक ऐसी फिल्म है दोस्तों, जिसे आप आज भी टीवी पर देख सकते हैं, और जब भी टीवी पर देखेंगे तो रिमोट छोड़कर देखने बैठ जाएंगे।
1: तो दोस्तों, ये था हमारा आज का बुधवार का स्पेशल सेगमेंट एक ही फिल्म से। उम्मीद है मोहरा के इस सफ़र में हमारे साथ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, और अपने कमेंट्स और अपनी इस फिल्म से जुड़ी यादें हमारे साथ शेयर करना, साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें।
0: और चलते चलते आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक बेहद ही भावुक और खूबसूरत गीत कुमार सानू जी की आवाज़ में।

0: तो साथियों, ये था हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम और हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। और अनुभूति जाते जाते हमारे साथियों को हमारे आज के कार्यक्रम में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता दें।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, पहला प्रश्न था, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली पर्वत को क्या कहा जाता है, जिसका उत्तर है ट्रोपोस्फेयर।
1: पृथ्वी को दो बराबर भागों यानी कि उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, ये दूसरा प्रश्न था, जिसका उत्तर है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर सही मिले होंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अनुभूति
0: और इरा को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत अजीज और दिलराज कौर की आवाज़ों में सूरज सनीम की लिखी हुई ये गज़ल। इसका संगीत दिया है राजेश रोशन ने। ये खूबसूरत गज़ल है डैडी फिल्म से।

डैडी फिल्म से तलत अजीज और दिलराज कौर की आवाज़ों में अभी आपने ये नज़्म सुनी, और एक और नज़्म हम आपको सुनवाते हैं जिसे जगजीत सिंह ने अपनी आवाज़ दी है। निदा फाजली ने इसे लिखा है और संगीत जतिन ललित का है। फिल्म का नाम है

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम के ठीक 6 बजे हम आपको सुनवाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओं, इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है।

0: इसे राक्षस ताल कहते हैं। यह एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है, जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है, जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहाँ गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहाँ तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभ देव से जोड़ा जाता है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहाँ तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी।
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है। जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।
3: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे।
4: ओह,
3: अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
2: अच्छा।
3: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
2: ओह,
3: उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
4: अच्छा।
3: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
2: ओह, मंगल पांडे।
3: हाँ, मंगल पांडे 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
4: अच्छा।
3: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: বড় বড় মহাপুরুষেরা এখানে জন্ম নিয়েছে। আজকে এই দেশ গোলাম। আমরা প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি এই ভারতবর্ষকে আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে আজাদ করে
1: তুলব।
2: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
3: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
4: बड़े बहादुर थे ये।
3: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
2: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
4: वो कहाँ के रहने वाले थे?
3: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
4: अच्छा।
3: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियां सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
2: अच्छा।
3: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
4: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
3: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
4: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
3: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
2: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
3: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
2: ऐसा क्यों?
3: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे। इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए।

0: और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
1: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
0: दादी फिर क्या हुआ? फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
1: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
2: खुद करनी होगी। सही कहे।
3: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
3: अच्छा।
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
4: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा चल नहीं सकता, नहीं।
0: उसके बाद क्या हुआ? बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
2: नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
5: भले ही हमें फांसी के तख्त पर झूलना पड़े,
2: बिल्कुल नहीं।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
6: हम पांडे को अरेस्ट मांगते हैं।
7: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद,
7: इंकलाब
8: जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
10: भारत माता की जय, भारत माता की जय।
3: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
3: दादी जी फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहाँ से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: हम पांडे को ठीक होना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजो।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बल बेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।
4: अच्छा।
2: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
7: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
8: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
9: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
8: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं।
10: तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
9: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
10: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
9: अच्छा माँ।
11: माँ
9: लो देवेंद्र भी आ गया।
11: दीदी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
10: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
9: ठीक है माँ।
11: नाश्ता नाश्ता यही ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यही टीवी के पास बैठकर खाऊंगा।
9: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
11: ये देखो दीदी, ये मारा।
9: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
11: अरे ये मारा।
9: अच्छा तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
11: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
9: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
11: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
10: लगता है कोई आया है। काशु बेटी देखो दरवाजे पर कौन है।
9: अच्छा माँ, कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है। अरे
3: हमें अंदर आने दो।
9: अरे क्यों?
12: ए लड़की रास्ते से हट जा।
9: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
3: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
12: ज्यादा होशियारी मत दिखा।
9: अरे
12: वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा।
9: हट
12: रास्ते से।
9: क्या हुआ? देखो जल्दी
10: आओ। ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
3: शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
9: हाँ, मेरी माँ को छोड़ दो।
3: ये चाकू देख रही है ना?
9: छोड़ दो।
10: मुझे मत मारो,
9: कुछ मत करो।
10: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम, याद नहीं कहाँ रखी है। छोड़ दो,
12: बहाने बाजी करती है। जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
10: अरे मेरे बात को छोड़ो,
9: मेरी माँ को छोड़ो।
3: चुप चुप, आवाज निकाली तो यही ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
12: सुनो सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
10: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
9: देवेंद्र।
11: हाँ दीदी।
9: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
11: अच्छा, हाँ।
9: पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
11: अच्छा।
9: हेलो।
13: हाँ बेटा बोलो।
9: पापा।
13: हाँ।
9: पापा।
13: हाँ बोलो बेटा।
9: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसाए हैं।
13: कौन घुसा है?
9: माँ को बहुत मार रहे हैं।
13: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
9: अब देवेंद्र मैं बाहर से शोर मचाती हूँ, तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
11: अच्छा।
9: बचाओ।

0: पर थी। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग, यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली। ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच की कमेंट्री के सीधे प्रसारण के लिए।
4: इन द टूर्नामेंट ओपनर इंडिया वुड बी नाउ अप अगेंस्ट द नीदरलैंड्स हु गेव बांग्लादेश अ रन फॉर देयर मनी। हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट बॉल 20। आई एम मेघा एंड जॉइन मी इन स्टूडियो एज माय को होस्ट इज सुहास वेदम। As experts, we have former cricketers Colonel Bhupraj Singh, Vaishali Mathur, and sports journalist Soumitra Bose. Welcome to the show.
5: Thank you.
6: Hello, hi, good evening.
7: Hello, everybody. Yes, as we dive further into this, we'll start with the.

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: महुआ, इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी का गाया गीत सुनिए। इसे लिखा है कमर जलालाबादी ने, धुन बनाई है सोनिक ओमी ने। अनुरोध आप सबका, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके परिवार के सभी सदस्य। लाबरिया भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और इनके बहुत सारे दोस्त। पलसिकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश सहजवानी, जिमी, अमिता, दियाना, हनी और जियांश मटाई।

प्यासा सावन। इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर का गाया गीत सुनिए। लिखा है संतोष आनंद ने, धुन बनाई है लक्ष्मी कांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं बिजलपुर से मोहनलाल चौहान, ललिता, प्रियंका परमार, वर्णिका, पंकज, सोनू, नितिन, राहुल, गुंजन, मुस्कान चौहान, अदव्या, अंकित, सलोनी, कान्हा, ऋषु चौहान और हेमंत चौहान। इंदौर से ही अनिल कवचाले, सबीहा, सुषमा, सीमा, सनिका, श्वेता, राखी, पूजा और मीनू कवचाले। वंदना नगर से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न खर्चे, ललिता, नारायण, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी, मालती, स्वाति और प्रयाग चौधरी। जिला 12 से सती श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। सोमानी नगर इंदौर से रौनक, दिव्यांशी, बी आर राष्ट्रीय, रोशनी, धीरज और श्रीधा

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चॉइस टाइम, ये आकाशवाणी है। आपने ट्यून किया है FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती का इंदौर केंद्र।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करे। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजना का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। श्री मोदी ने सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित कार्य सत्र में भी भाग लिया। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसी बीच श्री मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी सभी की नजरें हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्रू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडपम के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ओमान में भारतीय दूतावास ने एमटी सेटबेलो हमले में मारे गए दो भारतीय आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया के पार्थिव शरीर की स्वदेश वापसी की पुष्टि की है। हाल ही में एमटी सेटबेलो जहाज में हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। गुजरात में वडोदरा में एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने

0: पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इधर लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। श्रोताओं, एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। इस गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को सुबह 10:32 से लेकर 11:02 तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है आंखों के विभिन्न प्रकार के रोग और उनका उपचार। श्रोता इस विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाएं और प्रश्न स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति कोचर से पूछ सकते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के विविध भारती चैनल FM 101.6 MHz पर सुन सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए दिन और समय नोट कीजिए। गुरुवार दिनांक 18 जून 2026, समय सुबह 10:32 से लेकर 11:02 तक। प्रश्न पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं, कृपया नोट कीजिए, 2710223 और 2710224। फ़ोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224। इंदौर का STD कोड है 0731। 0731 ये STD कोड है इंदौर का। तो फ़ोन करना न भूलिएगा गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 यानी कल सुबह 10:32 से लेकर 11:02 तक विविध भारती इंदौर से FM 101.6 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है। कार्यक्रम का नाम है हेलो डॉक्टर और विषय है आँखों के विभिन्न प्रकार के रोग और उनका उपचार। आँखों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें कॉल करें और पाएं समस्या का समाधान। तो ये थी सूचना हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के विषय में।

श्रोताओं, आपको बता दें कि कल सुबह 7:20 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम साहित्य की। इसमें आप सुनेंगे कहानी एक यात्रा ऐसी भी। कहानीकार होंगे नितिन राठौर। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल सुनिएगा सुबह 7:35 पर।

कल के हमारे महत्वपूर्ण प्रसारण में रात्रि कल शाम 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बैतूल प्रवास पर आधारित रेडियो रिपोर्ट का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से। कल शाम 6:45 पर सुनिएगा लोक संगीत, कलाकार होंगी स्वाति उखले और साथी। खेती गृहस्थी कार्यक्रम रोजाना की तरह कल भी आप सुनेंगे शाम 7:20 पर। चित्रगीत होगा कल रात 9:15 पर और कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे उस्ताद निसार हुसैन खां को। तो ये थे कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करेंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा कल से होगा शुरू। इंदौर, बैतूल, ओंकारेश्वर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा समान नागरिकता संहिता यूसीसी विधेयक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक देश एक चुनाव, स्वदेशी और नागरिक कर्तव्य को विकसित भारत के आधार स्तंभ बताया। और मानसून की रफ्तार थमी, प्रदेश में अगले सप्ताह दस्तक के आसार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास पर रहेंगी। इस दौरान वह इंदौर, बैतूल, खंडवा जिले के श्री ओंकारेश्वर मंदिर, जबलपुर, ग्वालियर और श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल इंदौर पहुंचेंगी, इसके बाद वह बैतूल में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी बाय स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्यक्रम में शामिल होंगी। साथ ही श्री ओंकारेश्वर पहुंचकर मंदिर में दर्शन एवं आरती में सम्मिलित होंगी। शुक्रवार 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर ओंकारेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। शनिवार 20 जून को श्रीमती मुर्मू जबलपुर पहुंचेंगी। 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके पश्चात रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में सहभागिता करेंगी। सोमवार 22 जून को श्रीमती मुर्मू कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी। इसके बाद वह ग्वालियर पहुंचकर नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रस्ताव लाया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि विधेयक इसी सत्र में पारित हो जाएगा। डॉ. यादव ने आज विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू की जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा के आगामी सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि देश में एक समान कानून लागू करने की भावना में कुछ भी गलत नहीं है और यह समाज में समानता लाने का प्रयास है। उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में यूसीसी लागू किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे, उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा।
0: मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। यह 5 दिवसीय सत्र 24 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज उज्जैन जिले की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से कुल 207,57,00,000 रुपए की लागत वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें

0: करीब 188 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत के सामाकोटा बैराज के लोकार्पण सहित क्षेत्र के 13 उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवनों, महाविद्यालय एवं स्कूलों के नवीन भवनों तथा नवीन विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि सामाकोटा बैराज उज्जैन जिले में जल संरक्षण को नई ऊर्जा देगा। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, जिससे हमारे अन्नदाता किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल और खेतों को नई संजीवनी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत के एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने के साथ ही बैठक रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके राजनयिक संपर्क तथा प्रमुख मंचों पर वैश्विक नेताओं के साथ उसकी सक्रिय बातचीत को दर्शाता है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा पटना में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुशासन, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक मजबूत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है।
2: 12 साल में अगर मैं 12 बड़ी उपलब्धियों की बात करूं, तो नंबर एक, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। 4 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को पक्के मकान मिले हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। 3 करोड़ हमारी बहनें लखपति दीदी बनी हैं, यहाँ जीविका दीदियों के नाम से जानी जाती है। 57 करोड़ मुद्रा लोन से स्वरोजगार के क्षेत्र में क्रांति आई है। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय निर्मित हुए हैं। 3,14,000 करोड़ का डिजिटल लेनदेन हुआ है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। युवाओं के लिए 120 बड़े स्टार्टअप्स, लगभग 1,60,000 करोड़ का निवेश अकेले सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हो रहा है।
0: उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए समाज को कुछ उपयोग को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
3: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रदेश में मानसून की एंट्री अब 21 से 23 जून के बीच होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून फिलहाल तेलंगाना के भद्राचलम क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से ठहरा हुआ है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 34 जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का एक पौधा अपने बुजुर्गों के नाम अभियान आज से शुरू हुआ। बोर्ड अध्यक्ष सनवर पटेल ने वृक्षारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भव्य आम महोत्सव का आयोजन किया गया। जबलपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 19 जून को भंवरताल गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए

0: वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जयमाला कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, बोल समीर के आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये है विद भारती, देश की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग भैरवी से। फिल्म का नाम है श्री 420। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, बोल शैलेंद्र के, संगीत शंकर जयकिशन का।

अभी आपने राग भैरवी पर आधारित श्री 420 फिल्म का गीत सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पहाड़ी पर आधारित वक्त फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है साहिल लुधियानवी ने।

राग पहाड़ी के बाद अब बारी राग अहिल्या बिलावल की। परिचय फिल्म से ये गीत है, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

0: अभी आपने राग अलहैया बिलावल पर आधारित परिचय फिल्म का गीत सुना। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है।

0: रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका मेनू कार्ड। ये नाटिका ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एला कार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। नाट्य रूपांतरकार हैं मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।
1: शायद आपने सुना होगा कि एक सज्जन ने दावा किया था, दुनिया एक बंद सीप के समान है और वो एक दिन अपनी तलवार से उस बंद सीप का मुंह खोल देगा। उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे। लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है। लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
2: ओहो, ये मेनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन।
3: आप पहली बार यहाँ खाने आई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना स्वीडिश से शुरू होकर सूप पर जाकर खत्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है और कहाँ पुडिंग।
2: तो क्या सभी मेज के मेनू कार्ड इसी तरह के हैं?
3: जी हाँ, सभी इसी तरह के हैं। और तो और, मैनेजर के काउंटर पर जो मेनू रखा है वो भी इसी भाषा में लिखा गया है।
2: दूसरा कोई होटल इतने पास है नहीं और रोज कहीं दूर जाकर खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्या खाया जा सकता है?
3: देखिए, मेरी सलाह लीजिए, ये जिम्मेदारी आप बैरे पर डाल दीजिए और जो कुछ वह ले आए उसे आंख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
2: यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी क्या है?
3: ओके मैडम, मैं चलती हूँ। उम्मीद है शाम को फिर खाने पर मुलाकात होगी। बाय बाय।
2: बाय बाय। बैरा।
4: यस मैडम, कमिंग। क्या खाइएगा?
2: मैं क्या बताऊँ, अपनी मर्जी से ले आओ।
4: ओके मैडम।
2: बड़ा बुद्धू लगता है इस होटल का मालिक। अगर इसी मेनू कार्ड को साफ साफ लिख कर रख दे तो कम से कम खाने वाले को यह तो पता चल जाए कि वो आज क्या क्या खाने वाला है। यही ठीक रहेगा, शायद उसकी समझ में बात आ जाए। एक प्लेट चावल, दो स्लाइस सूप, सलाद।
5: हेलो सर।
6: यस मैडम।
2: शायद आप ही यहाँ के मालिक हैं।
6: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
2: देखिए, ये आपके यहाँ का मेनू है। मैं इसे दोपहर अपने साथ ले गई थी और साफ साफ टाइप करके ले आई हूँ। अगर इस तरह आप अपने मेनू कार्ड मेज पर रखें तो ग्राहकों को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी, साथ ही आपके होटल की साख भी बढ़ेगी।
6: थैंक यू मैडम, आप ठीक कहती हैं। मगर हमारे यहाँ रोज नई नई चीजें बनती हैं, इसलिए कम से कम आधा मेनू तो हमें रोज ही बदलना पड़ेगा।
2: तो इसमें मुश्किल क्या है? देखिए, मैं टाइपिंग का काम करती हूँ और रोज यही खाना खाने आती हूँ। अगर आप हर शाम मुझे दूसरे दिन बनने वाले खाने की लिस्ट दे दिया करें तो दूसरे दिन सुबह ही मैं उसे टाइप करके भिजवा दूंगी।
6: ओह, वंडरफुल वंडरफुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल मैडम, इस मेहनत के बदले हम आपसे खाने के पैसे नहीं लेंगे। ओके।
2: ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन

0: इसके साथ ही अगर एक और बात मान ले तो बड़ी आभारी रहूंगी।
1: यस।
0: खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दिया करें। बस इसी होटल से लगा मेरा कमरा है, रूम नंबर 87।
1: मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैं जरूर आपका खाना पहुंचाने का इंतजाम करवा दूंगा।
0: थैंक यू वेरी मच। आपको तो ऐसा करिएगा कि जब आप शाम का खाना भिजवाएं तो दूसरे दिन का मेनू भिजवा दिया करिए, और जब सुबह चाय लेकर बैरा आएगा तो उसके हाथ में टाइप किया मेनू भिजवा दूंगी, और शाम के मेनू के बारे में भी पूछताछ कर लूंगी।
1: ठीक है ठीक है।
0: अच्छा, कुल कितनी मेज है यहाँ?
1: मेज 12।
0: तो 12 यह है, एक आपके लिए और दो फालतू, कुल 15 मेनू कार्ड, ठीक है ना?
1: हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
0: एक बहुत बड़ी समस्या कितनी आसानी से सुलझ गई। आज ही वॉल्टर को पत्र लिखूंगी तो वो बहुत खुश होगा। मगर जब से मैं इस कमरे में आई हूँ उसके पत्र ही आने बंद हो गए। पता नहीं वह किस तरह से इतनी मेहनत कर रहा है। कभी कभी कितनी अजीब घटना घट जाती है। क्या पता था मुझे कि वॉल्टर से प्रेम हो जाएगा, लेकिन वॉल्टर कितनी मेहनत करता है उस फॉर्म में, रात दिन उसी में जुटा रहता है। काश उसके अनाज के गोदाम में उस दिन आग नहीं लगती तो फिर मुझे इस तरह शहर थोड़े ही आना पड़ता। क्या भयंकर आग थी उस दिन। वॉल्टर,
2: सारा अब क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो सारा, सब कुछ चलकर खाक हो गया।
0: अब इस तरह रोने से क्या होगा वॉल्टर, हिम्मत न थारो, मेहनत करो और फिर से इस फॉर्म को अनाज से भर दो।
2: क्या सोचा था, क्या हो गया सारा, भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए।
0: सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं वॉल्टर, उनसे क्या घबराना, हम नए सपने दोबारा बुन लेंगे, तुम मेहनत करो।
2: मगर अब हम कैसे सब कर पाएंगे, सारी पूंजी सारा अनाज आग ने जलाकर खाक कर दिया है, और सारा एक महीने से तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं।
0: देखो वॉल्टर, वक्त का हाथ कौन पकड़ सका है, गोडाउन जल गया है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। उठो, पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे एक बात सूझिए, सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए।
2: कहो।
0: देखो वॉल्टर, अगर हम इसी तरह गांव में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि तुम तो यहीं रहो, वापस उस फॉर्म को खड़ा करो और मैं शहर चली जाती हूँ, वहाँ कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूँगी। बस जनवरी तक हमारे दिन फिर जाएंगे और बसंत की बहारों के दिन हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
2: लेकिन बसंत का मौसम आने में तो अभी 10 माह बाकी हैं, और 10 महीने तक तुम से अलग नहीं सारा, ये नहीं हो सकता।
0: वॉल्टर, मैं लड़के होकर हर मुसीबत से जूझने को तैयार हूँ, और तुम मर्द होकर इतने परेशान हो रहे हो। सिर्फ 10 महीने की तो बात है।
2: हा?
0: और मैं टाइपराइटर ले जाऊंगी, जिसे और कुछ काम न मिले तो कम से कम टाइपिंग करके ही कुछ न कुछ कमा लूंगी।
2: 10 महीने सारा, सोचकर ही मन कांपने लगता है।
0: लेकिन 10 महीने बाद की तो कल्पना करो वॉल्टर। और एक बात और भी है वॉल्टर, कुछ दिन अलग रहकर हम अपने प्यार की सही कीमत आंक सकेंगे।
2: सारा।
0: वॉल्टर। आठ महीने बीत चुके हैं, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, और वॉल्टर ने लिखा था कि वह उस दिन स्वयं मुझे लेने आएगा। ओह, कितना सुहाना दिन होगा वो, पता नहीं कितना बदल गया होगा वॉल्टर।

0: बुलवाया था मुझे?
1: यस मैडम, प्लीज हैव योर सीट।
0: थैंक यू।
1: देखिए अब बसंत का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे मेनू कार्ड भी पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कुछ नई चीजें ग्राहकों को दी जाएगी।
0: जी हाँ, कल मौसम का पहला दिन है। ओह वाल्टर
1: जी, क्या कहा आपने?
0: कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप क्या नई डिशेस बनाते हैं?
1: बस जरा हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर रहता है। हमारी खास डिश है हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: उसे भी यह सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है।
1: जी किसे?
0: ओह माफ कीजिएगा, मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। हाँ तो ये सब्जी आप रोज बनाएंगे?
1: जी हाँ, करीब करीब रोज ही, कल से ही हम इसे बनवाना शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा, ये सब्जी हमारे यहाँ एक खास ढंग से बनती है।
0: तो ऐसा करते हैं कि इसे बड़े टाइप में काफी स्पेस देकर टाइप कर देती हूँ।
1: वंडरफुल वंडरफुल।

0: गाजर की सब्जी सूखी, मूली का रायता, आलू, पनीर। ओह वॉल्टर, तुम कहाँ हो? कल से बसंत का मौसम शुरू हो रहा है। ये देखो, तुम्हारी मनपसंद सब्जी में उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। वॉल्टर, कल ज़रूर आ जाना। वॉल्टर, तुम्हारे पत्र भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं। वॉल्टर, कल ज़रूर आना, ज़रूर आना, ज़रूर आना।
1: मेम साहब, आपका खाना
0: रख दो यहाँ। हाँ, आज तो नई सब्जी लाए होगे।
1: जी हाँ, और हमारे यहाँ की सबसे मशहूर सब्जी भी है। ये देखिए, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: तुम ये सब्जी ले जाओ, वापस ले जाओ।
1: बट मैडम, ये तो हमारे यहाँ की खास डिश है, आप चक्कर तो देखिए।
0: नहीं, तुम नहीं जानते, मैं अभी इसे नहीं खा सकूंगी, नहीं खा सकूंगी।
1: ओके, जैसा आप कहोगे।
0: ओह वॉल्टर, बसंत का पहला दिन तुम्हें मुबारक हो। लेकिन तुम कहाँ हो वॉल्टर? तुमने वादा किया था कि तुम इस दिन मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। काश तुम आज यहाँ होते तो हम दोनों साथ साथ तुम्हारी मनपसंद सब्जी खाते। वॉल्टर, कौन है?
2: सारा।
0: वॉल्टर, ओह वॉल्टर, तुम सच ही वॉल्टर हो ना? बेरा, बेरा।
3: यस मैडम।
0: उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी वापस लाओ।
3: ओके मैडम।
4: सारा।
0: वॉल्टर, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं डाला कि तुम आ रहे हो?
4: वाह, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ आ गया था, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में गया तो पता चला कि तुमने बहुत पहले ही वो जगह छोड़ दी है। बस तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
0: लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही खत डाल दिया था और उसमें नया पता भी लिख दिया था।
4: नहीं, ऐसा कोई खत मुझे तो नहीं मिला।
0: अच्छा, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे?
4: असल में मैं अभी तुम्हारे वाले होटल में खाना खाने गया। वहां जब मैं मेनू देख रहा था तो आलू पनीर के बाद वाली सब्जी देखकर चौंक उठा। बस फौरन मैनेजर से तुम्हारे बारे में पूछताछ की, उसने तुम्हारा पता दिया और मैं यहाँ।
0: हाँ, मुझे याद है कि उसके बाद तुम्हारी मनपसंद सब्जी का नाम था।
4: साथ ही मुझे ये भी मालूम था कि तुम्हारे टाइपराइटर का वह अक्षर कुछ आड़ा टाइप होता है।
0: लेकिन उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी में वह अक्षर कहाँ से आया?
4: लेकिन सारा डियर, तुमने जो सब्जी टाइप की है उसे जरा पढ़ो तो।
0: क्यों, क्या टाइप किया है? देखूं, उबले हुए अंडों के साथ प्रिय वॉल्टर। असल में मैं उस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रही थी।
5: मेनू कार्ड हवा महल में आज आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ट का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरकार थे मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और टोची रैना की आवाजों से। फिल्म का नाम है शॉर्ट इन द सिटी, संगीत सचिन जिगर का, बोल समीर के।

अब सुनिए रूप कुमार राठौर के आवाज में अग्निपथ फिल्म का गीत। अजय अतुल का संगीत है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

रंग दे बसंती। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज में। धुन बनाई है ए आर रहमान ने, बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंग इज किंग, अब सुनिए इस फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गीतकार मयूरपुरी, संगीतकार प्रीतम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश दिल्ली 6 फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन पक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के समक्ष ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देशभर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
2: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 रूपये पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉ कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रूपये से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश माघो विद द न्यूज एट 9।

आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली। भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट के आंखों देखे हाल के लिए।

श्रोताओं, हमें खेद है कि किसी कारणवश हम आपको नीदरलैंड और इंडिया के बीच खेले जाने वाले वुमेन्स वर्ल्ड कप की लाइव कमेंट्री नहीं सुनवा पा रहे हैं। इस समय लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थी। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की।

0: जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
1: देखते हो रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
2: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
1: क्या काम करते हो?
2: बेकार।
1: नौकरी चाहते हो?
2: मुझे नौकरी मिलेगी।
1: इस पते पे कल चले जाना और मैंने दशाह से मिलना।
0: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थी। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की, इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई वो तुम्हारे DTH।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: हाँ, वर्मा जी। वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: रामप्रसाद।
1: रामप्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रावेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास,
2: अरे चुनी हुआ हो तुम,
1: ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबरें हैं?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो?
2: ये भी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदा। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किया जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला लो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार हो।

0: जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
1: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है,

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज इस घर में हो क्या रहा? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
2: ये क्या गाना पूछी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
2: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
2: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
2: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
2: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है।

0: बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
1: हाँ, और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
0: अच्छा,
1: मुझे आशा ने बताया।
2: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: सन 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मन।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्हीं ने कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में ना पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देखकर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: रहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल दे।

उफ, ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है, और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाए।